सिमर रुख सरायरा अत दीर्घत मुच ओए जावे आस कर जाए निरा सिख फल फिके फुल बक बके कला मनावे पत

वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक्त ने चो कर्म कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे।

0: रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन बताए कोई बकरा दिन खाया सकु अख पा ओए पुराना सुटी है भी फिर पाई है हो नानक तग ना टुटे जे तग हो वै जोर महला पहला
1: ना मने आपा तू पजै सारा ही सच सूत दरगे अंदर पाई है तग ना टुट।

0: ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਰਮੰਗਣ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ
1: ਪੌੜੀ ਚਿੱਟੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਆਏਦਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ, ਨਦਰੋ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਦਾ, ਦਰਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਦਾ।
2: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार

रोजगार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट UGCNET.NTA.NIC.IN पर ऑनलाइन

0: जाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। द जीएसटी काउंसिल
2: मीडिया में 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आओ हुण गांधी चर्चा के तहत महात्मा गांधी के प्रेरक प्रसंग सुनते हैं।

एक बार दक्षिणी अफ्रीका दे टॉलस्टाई फार्म विच गांधी जी ने अपने जर्मन मित्र कालेन बैक नू कहा कि सप्पां ते होर अजिहे जीवां नू मारना पाप है। कालेन बैक ते उना दे यूरोपियन साथी ए सुन के हक्के बक्के रह गए। कालेन बैक ने सोचिया कि जे सप्प ठोयां नू मारना गलत है ता फिर सानू उना नाल मित्रता करनी चाहीदी है। ए सोच के कालेन बैक ने सप्पां बारे किताबां इकट्ठियां कीतियां ते उना दा अध्ययन कीता। उना नू पता लगा कि सारे सप्प जहरीले नहीं हुंदे, सगों कुछ किसानां दे मित्र हुंदे ने ते उना दियां फसलां दी राखी करदे ने। कालेन बैक ने होर आश्रम वासियां नू दस्या कि किवें वक्-वक् किस्मां दे सप्पां दी पछाण कीती जा सकदी है। उसने आप एक वड्डा फनियर सप्प भी पालिया। इस सप्प नू ओ अपने हत्थी खुआंदा सी। ए वेख के एक दिन बापू ने उसनू कहा, तुसी ए सब कुछ मित्र भाव नाल करदे हो, पर हो सकदा है कि सप्प नू तुहाडी मित्रता दी समझ ना आए, नाले तुहाडी दया विच डर दा अंश है। जे सप्प आजाद होवे तां साडे दोहां विचों कोई भी उस नाल खेडन दा हौसला नहीं करेगा। सानू लोड़ इस हौसले दी है। सप्प नू पालना कोई प्यार दी गल नहीं है। साडा विहार अजिहा होना चाहीदा है कि उस दी सप्प नू वी समझ पै जावे।

हर रोज असी ए वेखदे हां कि सारे पशु झटपट समझ जांदे ने कि असी उन्हां नूं प्यार करदे हां जां उन्हां तों डरदे हां। तुहाडा विचार सप दा अध्ययन करन दा है, उस नूं मित्र बनाउण दा नहीं। सच्ची मित्रता दे मामले विच अजिहे अध्ययन दी कोई थां नहीं है। इस दे बावजूद भी कॉलिन बैक दा ए हौसला ना पिया कि ओ सप नूं खुला छड़ देवे। आप बापू भी सप विच बड़ी दिलचस्पी लैंदे रहे ते बच्चे उस नूं वेख वेख खुश हुंदे रहे। पर एक दिन सप पिंजरे विचों निकल गया। आश्रम दे लोकां दा सप दा बहुत सारा डर जांदा रहा, पर बापू ने सप्पां नूं बिल्कुल मारन दी मनाही नहीं सी कीती। ए विश्वास रखना होर चीज है कि कोई काम हिंसा जा पाप वाला है, पर इस विश्वास ते पूरियां उतरना दूजी गल है। जे कोई आदमी सप्पां तो डरदा होवे ते सप्पां नूं मारन तो बचन लई आप मरन लई तैयार होवे, केवल तां ही ओ इस विश्वास ते पूरा उतर सकदा है। बापू दे अपने जीवन विचों इस दी एक मिसाल मिलदी है। ए गल साबरमती आश्रम दी है। साल 1917 विच एक शाम नूं बड़ी ठंड सी। प्रार्थना सभा मुक चुकी सी ते बापू एक सराहणे दा आसरा लैके दीवान ते बैठे सन। बा ने उन्हां दे मोढे ते पिठ ते शाल पा दित्ती सी। आश्रम दा एक आदमी उन्हां कोल बैठा गल्लां कर रहा सी। इस आदमी ने, जिसका नां रवजी भाई सी, एकाएकी चिट्टे कपड़े उत्ते कोई काली चीज हिलदी वेखी। उसने अगे मुड़ के वेख्या ते उत्थे पता लगा कि एक वड्डा सारा सप गांधी जी दी पीठ ते चढ़ आया है। उसने अगे मुड़ के वेख्या ते उत्थे पता लगा कि एक वड्डा सारा सप गांधी जी दी पीठ ते चढ़ आया सी। सप बापू दे मोढ़े तक पहुंच चुकिया सी ते होर उत्ते चढ़न लई किसी ठोस शै दी भाल कर रहा सी। बापू ने रवजी भाई दे चेहरे ते दहशत वेखी ते पुछया कि की गल है। इसे समय विच रवजी भाई ठरमे विच आ चुका सी। ओ जानता सी कि जे ओ घबरा गया ते उसने हाल दुआई पा दित्ती तां हो सकदा है कि इस नाल बा ते होर लोग डर जान, इस भगदड़ विच सप वड़ सकदा सी। सो उसने हौली जही गांधी जी नूं कहा, कोई खास गल नहीं बापू, तुहाडी पिठ ते एक सप है, तुसी हिलना ना। गांधी जी ने कहा, मैं हिलांगा नहीं, पर तुसी की करोगे? मैं चौहां कन्या तो शाल नूं फड़ के तुहाडे मोढ़ियां तो ला देंगा ते नाल ही सप लथ जावेगा। गांधी जी ने सिर हिलाया, मैं समझदा हाँ, मैं नहीं हिलदा, तुसी अपना ध्यान रखना। रवजी भाई हौली हौली बापू वल गया। उस वेले तक सप नूं कुछ समझ आ चुकी सी ते उसने शाल दियां तैहां विच कुंडली मार ली सी। रवजी भाई ने झटपट शाल ला ली ते उत्थों दौड़ गया। उसने काफी दूर जाके सप नूं छड़ दिता। मगरों बापू नूं पुछिया गया कि उन्हां इस घटना दे दौरान की महसूस कीता सी। बापू दा जवाब सी, एक पल मैनू निरोल डर पासिया सी, पर केवल एक पल, छेती ही मैं अपने आप ते काबू पा लिया ते फिर मैनू कुछ महसूस ना होया। मेरे मन विच केवल एक ख्याल सी कि मैनू सप ने कट लिया तां मैं सबनू कहांगा कि इस सप नू मारो ना, सगों खुला छड़ दियो।

0: जय हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी, बचालो, की हाल चाल है तेरा?
0: कृपा जी, उस दाते दी तुसी अपना सुनो।
1: तगड़ा हाल चाल। देखो रंगा सिंह जी, जेड़ा आ समा है साडे कोले
0: जी,
1: पतझड़ दी जेड़ी फसल है आलूआं दी, ओदी काश्तकारी दा बड़ा टुकमा समा है
0: जी।
1: गल है कि कोई भी फसल जेड़ी है जो आपां बिना व्योंतबंदी तो बाजारे थले लेके आउने आ, तो बड़ियां सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां कमियां पेश रह जांदियां ने।
0: बिल्कुल जी, उहदा फिर नुकसान चलने पैंदा,
1: नुकसान खेत दे विच दिखदा है। सो इस करके कोशिश ही करनी चाहीदी है कि जिहड़ी अगाऊं व्योंतबंदी है
0: जी,
1: उहदे च की फसल दीआं लोड़ां है, किहड़ा बीज लैणा है, किन्ना बीज लैणा है, कित्थों बीज लैणा है, इह सारियां चीज़ां। क्योंकि बीज आलू, क्योंकि आलू इक ऐसी फसल है जे नरुआ बीज पावांगे, सुधरिया चंगा बीज पावांगे, तो फसल का जम जिहड़ा चंगेरा होगा।
0: बिल्कुल जी,
1: है कि नहीं? अगर जिहो जिहा तेरा अन्न पानी, उहो जिहा कम जाणी नाल हिसाब हो जांदा। सो इस करके ये मुढ़लियां गल्लां दे विच रंगा सिंह जी, तो आप गल करते हाँ कि किस्मां ने साडे कोले वख वख तरह दीआं किस्मां है
0: जी,
1: जिन्हां नूं आप बाजारे थले लैके आ सकते हाँ। अगेतियां दे विच कुफरी सूरिया है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोका किस्म है, तो कुफरी पुखराज किस्म है
0: जी महाराज।
1: ते जिहड़ियां दरमियाने समें दीआं किस्मां है, उच कुफरी पुष्कर है, कुफरी ज्योति है, कुफरी बहार है। ते इसे तरह जे गल करिए पछेतियां दी, कुफरी संदूरी है, कुफरी बादशाह है
0: जी।
1: ते इह तों अलावा रंगा सिंह जी, आपां सारे जाणदे कि फसल दे विच प्रोसैसिंग दी बड़ी समर्था है।
0: बिल्कुल जी,
1: आलूआं दी फसल दे विच ते प्रोसैसिंग वालीआं किस्मां दे विच कुफरी चिपसोना है नंबर एक, कुफरी चिपसोना नंबर तीन है, कुफरी फ्राई सोना है अपने कोले।
0: बिल्कुल
1: किस्म। सो यह वख वख तरह दीआं किस्मां है जिन्हां नूं आपां ने बाजारे थले लैके आउणा।
0: ठीक।
1: रंगा सिंह जी, आलू का बीज किसी भरोसेयोग वसीले तों ही खरीदना चाहिए, जिदा मैं पहलों जिक्र किया, और हर तीन चार साल बाद नवां बीज लैके पुराने बीज नूं बदल देना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक किया जी,
1: क्योंकि लगातार जिहड़ा है इको तरह का जो बीज आपां वरतदे आ, उहदे नाल फिर उहदे उत्पादन समर्था घट जाती है।
0: तो मिकदार किन्नी लैनी आपां?
1: मिकदार की गल भी यह आ जाती है कि जो आप पतझड़ रुत की फसल

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दयानिधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: लोकगीत सुनाए जाएंगे दोपहर 2:30 बजे। बाद दोपहर 4:02 ते साडी दूजी सभा दे शुरुआत च तुसी सुनोगे सूफियाना कलाम और स्वर्ण नूरा इन्हां दे गाए कलाम सुनाए जाएंगे। देहाती प्रोग्राम दा समा रोजाना दी तरह शाम 6:30 बजे जिहदे विच कम दीआं गल्लां अते बाहरी परजीवियां नाल पशुआं च होण वाले नुकसान इहदे बाबत डॉक्टर हरकीरत सिंह ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ। ਸੱਤ ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬਰੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਬਰਾੜ। 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਤੇ 8:10 ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰ ਰਾਤ 10:02 ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6:55 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति। पोषणं, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणं च। वस्तु सेवा कर परिषदा नवदिल्ल्यां संपन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं, अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः 1 कोटि रूप्यकेभ्यः 5 कोटि रूप्यकाणि यावत् वर्धनं सम्मिलिताः सन्ति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन्ती एतस्य घोषणाम् अकरोत्। प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे दण्डस्य निर्धारणं सः अर्थदण्डः भवतु, कारावासः भवतु उत वा उभयं न्यायालयस्य विवेकाधिकाराय त्यक्ष्यते। वित्तमंत्री उक्तवती यत् उपवेशने वस्तु सेवा करस्य मानेषु किमपि परिवर्तनं न कृतं तथा वर्तमानः मूल्य निर्धारण क्रमः स्थिरः अस्ति। तया सूचितं यत् वस्तु सेवा कर परिषदा सूचना पत्राणां प्रेषणाय कार्य संचालनाय च समान मानकानां अनुशंसा कृता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स

0: AIR News Alerts Ityatra Asman Anusarantu.
1: भारतेन विगतेषु कतिपयेषु दिवसेषु आभा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं तथा रियादनगरे स्थितं किंग खालिद अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं लक्ष्यीकृत्य जातानां आक्रमणानां निन्दा कृता. एतेषु आक्रमणेषु नागरिकाणां मृत्युः अभवत् तथा अनेक जनाः व्रणिताः जाताः. विदेश मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् नागरिकोपयोगी आधारभूत संरचनां लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं सर्वथा अस्वीकृतं वर्तते. रियाद नगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन सऊदी अरब देशे निवसतां भारतीय नागरिकाणां कृते परामर्शः प्रसारितः. वर्तमान स्थितिं दृष्ट्वा भारतीय नागरिकाः सतर्काः भवेयुः, आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः. भारतीय नागरिकाः प्रवर्तमान घटनाभिः सम्बद्धानां दृश्य श्रव्य चित्राणां वार्तानां च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः. स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सूचितम्. प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायाम् 8002741234 इत्यत्र उपलब्धा अस्ति. क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांचीनगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः.
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं. ते आओ चात मारते हैं हुण तक दियां मुख खबरां वल्लों. वस्तु अते सेवा टैक्स जीएसटी कौंसल ने टैक्स अधिकारियां दा गिरफ्तारी दा अधिकार खत्म कर दिता है. कौंसल ने मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपए तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दिती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा सेहत संभाल अते सरकारी सेवावां तक पहुंच नूं आसान बनाया है. भारत ने पिछले साल 863 अरब डॉलर की बरामद दर्ज की है और इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का टीचा रखा है. इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप शिक्षा संस्थावां खोजकर्ताओं और विद्यार्थियों लिए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तक पहुंच यकीनी बनाने लिए वचनबद्ध है. कैनेडियन लेखिका एमी कार्सन नू साहित्य लई इस साल दा नोबेल पुरस्कार दिता जाएगा. मुख्यमंत्री बलवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ विखे हुनर पंजाब अते फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल कीते जारी. कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने पठानकोट दियां मंडियां दा दौरा कीता है. क्या हुण तक किसानां नूं खरीद दे 1421 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए. पंजाब सरकार वालों अज सरकारी स्कूलों में करवाई जाएगी मेगा पीटीएम. 25 लाख मापे शामिल होंगे. मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना तहत हुण तक 3722 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्री महिलावां दे बैंक खात्यां विच ट्रांसफर की जा चुकी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नगर निगम चंडीगढ़ के एक सैनिटरी इंस्पैक्टर 14 लाख रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है. यह सन हुण तक के मुख समाचार. तुसीं जुड़े हुए हो आकाशवाणी के जलंधर केंद्र के नाल और 7:02 हो गए हैं तो हुण समा हो गया है तुहाडे सब दे मन पसंदीदा प्रोग्राम सोहणी सवेर दा. ते आओ फिर बरिंदर होणा कोलों ये प्रोग्राम सुनते हैं.

जरा हटके जरा बचके फिल्म दे गीत तुसी सुन रहे सी वरुण जैन सचिन जिगर शादाब फरीदी अल्तमश फरीदी ते साथियों की आवाज च क्योंकि आकाशवाणी जलंधर ते सोनी स्वर प्रोग्राम चल रहे ते घर आ जाए इस वेले सफाई चल रही सफाई का काम जंगी पद्धर ते चल रहा झाड़ू लग रहे ने पोचे वज रहे ने ते घर का कोई भी मैंबर ना गिले पोचे ते पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता वेखो जी घर विच साफ सफाई ते रसोई दे मामले च जिहड़ी ताकत औरत दे कोल ना उहदा मुकाबला नहीं किया जा सकता ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ

0: डाक विभाग जो प्यार रुसवाई खुशी गमी नौकरी दी खबर जां तरक्की दे सुनेहे भारत दे कोने कोने तक पहुंचाउंदा रहे।
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
0: आज जेड़ा 9 अक्टूबर दा दिन है ना जी, पूरे संसार विच वर्ल्ड पोस्ट डे दे तौर ते मनाया जा रहा। दरअसल 9 अक्टूबर 1974 नूं ना स्विट्जरलैंड दी राजधानी बर्न विच यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दी स्थापना हुई सी, जिस करके साल 1969 विच जापान दे टोकियो च एक कॉन्फ्रेंस हुई ते उत्थे ए फैसला कीता गया कि 9 अक्टूबर दा दिन विश्व डाक दिवस दे तौर ते मनाया जाएगा। अज दे आंकड़े कहंदे ने कि दुनिया भर विच 6,79,000 तों वध पोस्ट ऑफिसेज ने जिथे लोकी अपनी डाक पोस्ट करदे ने। 46 लाख तो वध कर्मचारी ने जो इस विभाग विच काम कर रहे ने, दिन रात एक करके साड़े तक साड़ियां चिट्ठियां पहुंचाउंदे ने। दुनिया भर विच एक अंदाजा है कहंदा है कि 1.5 अरब लोग ने जो बुनियादी वित्तीय सेवावां दे लई अपने स्थानक डाकघरां ते निर्भर ने। तुहानू पता जी कि दुनिया दा सब तो पुराना डाकघर केड़ा? साल 1712 विच स्कॉटलैंड विच ए डाकघर बनिया सी जो अज भी चल रहा है। इसका नाम है सेंकुआर पोस्ट ऑफिस। ते साडे लई माण वाली गल है कि भारतीय डाक विभाग दुनिया का सब तो वड्डा डाक नैटवर्क है। 1.5 लाख तो ज्यादा डाकघर साडे देश विच ने। भारत के जम्मू कश्मीर की झील डल लेक विच दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। दुनिया की सब तो जिहड़ी पहली अधिकारित डाक टिकट है ना, साल 1840 विच ब्रिटेन विच जारी की गई सी, जिसनों पेनी ब्लैक किया जाता है। लो जी, वर्ल्ड पोस्ट डे वाले दिन अज सोनी स्वर प्रोग्राम च असीं सुरेश कुमार होरां दे नाल गलबात करन लगे हां, जो कि डाक विभाग दे उच्च अधिकारी ने ते जिन्हां तों जाणदे हां कि डाक विभाग दीआं इस हफ्ते गतिविधियां की रहिण वालियां ने। सुरेश कुमार जी, साडे प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है, ते साडे सुनण वालियां नूं जरा दस्सो कि अज वर्ल्ड पोस्ट डे है ते कल नैशनल पोस्ट डे है ते उस तों बाद असीं राष्ट्रीय डाक हफ्ता भी मनाउणा, सो इन्हां दिनां च तुहाडे अदारे दीआं गतिविधियां की होण वालियां ने जी?
2: इंटरनेट
0: दे इस्तेमाल नाल सहूलतां होर ज्यादा कंज्यूमर्स नूं दित्तियां जा रहियां ने। अच्छा सुरेश कुमार जी, पुराने समय च ना असीं डाकियां दा इंतजार ही करदे रहिंदे हुंदे सी कि कदों साडी चिट्ठी आएगी या कदों जिहड़ी चिट्ठी पाई उह पहुंचेगी। अजकल टेक्नोलॉजी दी मदद नाल ट्रैक भी आपां कर सकदे हां जी कि साडी चिट्ठी राह च पहुंची कित्थे गई।
2: श्योर सर, ओंदर जदों आपां नेट बुकिंग करान जांदे आ पोस्ट ऑफिस ते इक ट्रैकिंग आईडी मिल जांदी हैगी, ओह सर हर कस्टमर अपने नेट ते गूगल ते जा के ट्रैकिंग आईडी पोस्ट ऑफिस लिख के सर्च कर सकदा ओहदा आर्टिकल कित्थे पहुंचिया। जे उहनूं नहीं पता लगदा साडे काउंटर ते साडे पीए साहबान एसपी साहब बैठे हुंदे आ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
0: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੀ?
2: ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 99%

0: रंग दे बसंती फिल्म चो तुसी दिलेर मेहंदी ते साथियों दी आवाज च गीत सुनिया। आकाशवाणी जलंधर ते चल रहा जी प्रोग्राम सोनी सवेर। तुसी महसूस किया होना है कि यह जेडे कलाकार होंदे ने यह अपने हुनर नाल अपनी कला नाल साडे दिल विच घर बना लैंदे ने, साडे नाल एक रिश्ता कायम कर लैंदे ने। जिन्नी इन्हां दी कला प्रभावशाली डूंगी असरदार हुंदी है उन्नी ज़्यादा यह सानू अपने अपने लगते ने। नाना पाटेकर इदां दे कलाकार सन जिन्हां ने हर दिल विच अपनी जगह बनाई। इस करके कल जदों उन्हां दे देहांत की खबर सुनी तो सारियां नूं इदां लगा जिदां उन्हां दे घर दा ही कोई जी चला गया होवे, क्योंकि नाना पाटेकर की अदाकारी उन्हां दा काम हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका सी। परदे ते जदों समाज दी कुरीतियां दे खिलाफ गुस्सा विखाउंदे सी ते हर किसी नूं लगदा सी कि इह उहदी अपनी ही आवाज़ है। विविध भारती च उन्हां दी एक मुलाकात रिकॉर्ड की गई सी जिदे जरिए अज दे सोहणी सवेर प्रोग्राम च उन्हां दीआं कुछ यादां सांझियां करदे आं। अपने बचपन बारे नाना पाटेकर ने इस मुलाकात च कहा सी,
1: मेरा बचपन गांव में बीता, मुरूर जंजरा में पहली से सातवीं तक। फिर मुझे सुधारने के लिए माँ ने मौसी के पास भेजा, फिर मौसी के बच्चे बिगड़ जाएंगे इसलिए मौसी ने मुझे वापस अपने घर में भेजा।
0: बेशुमार फिल्मां च वन सवन्ने किरदार करन वाले नाना पाटेकर हर फिल्म च अपने किरदार विच रच मिच जांदे सी। उन्हां दे जीवन दा किरदार बहुत उच्चा सी। रोहित शेट्टी दी एक फिल्म विच जदों उन्हां तों उन्हां दी फीस बारे पुछया गया तां उन्होंने अपनी सारी दी सारी फीस एक अनाथालय नूं दान कर दित्ती सी। पाठशाला फिल्म च उन्होंने स्कूल दे प्रिंसिपल दा किरदार कीता सी और इस फिल्म दी फीस नूं अपने कोल रखण दी बजाए उन्होंने पंज समाजिक संस्थावां नूं दान कर दित्ती सी। इस मुलाकात विच नाना पाटेकर ने अपने सुभाअ बारे दस्या सी कि उह ग्लैमर तों भीड़ तों दूर रहना पसंद करते ने।
1: मैं बंबई में बहुत कम रहता हूँ, मैं भीड़ मुझे रास नहीं आती, तो मैं पूना में मेरा एक छोटा सा फार्म है वहाँ रहता हूँ। मैं सिमगढ़ जो है खाई में है। चित्रकारी और थिएटर में स्कूल में था तब से कर रहा था, चित्रकारी में स्कूल में था तब से कर रहा था। कॉलेज में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट में गया, फिर वहाँ से कमर्शियल आर्ट की डिग्री हासिल की, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, लेकिन इसके साथ लगातार मैं थिएटर करता रहा। और फिर एक दिन नौकरी छोड़ दी और मैंने थिएटर करना ही शुरू कर दिया। फिल्मों में आया वो स्मिता पाटिल की वजह से, वो मुझे घसीट के लेके गई और उसकी वजह से मैंने फिल्मों में काम कर शुरू किया।
0: नाना पाटेकर होरां दा जीवन जदों असीं वेखदे हां ते पता लगदा है कि वो सिर्फ फिल्मां च काम नहीं सी करदे, इंसानियत दा काम भी करदे सी, लोकां दी मदद करन दा काम भी करदे सी, गरीबां दे दुख दर्द वंडन दा काम भी करदे सी। फिल्मां च काम करदिआं उन्हां ने 1.5 करोड़ रुपया जोड़िया तां कि वो अपनी एक वधिया जी कार खरीद सकन, पर फिर उन्हां ने विदर्भा दे किसान परिवारां दा दर्द देखिआ कि किद्दां वो गरीबी नाल जूझ रहे ने, किद्दां भुख नाल लड़ रहे ने। उन्हां ने यह सारा कुछ वेख के अपनी जोड़ी हुई 1.5 करोड़ की रकम विदर्भा के गरीब किसानों में वंड दिती। हर परिवार को 15,000 रुपए का चैक दे के उन्हां दी मदद की। विविध भारती नाल की अपनी इस मुलाकात में उन्होंने अपने करियर के दिनों चेते करद्या यह दसिया कि डायरैक्टर एन चंद्रा होर का उन्होंने करियर में बहुत वड्डा योगदान सी।
1: एन चंद्रा ने मुझे अंकुश का रोल ऑफर किया, हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था। ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये मांगे तो वो उनके पास थे नहीं, तो फिर एन चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया। लेकिन एन चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती, तो इन चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसलिए।
0: नाना पाटेकर भारत की फौज के नाल बहुत प्यार करते सी, फौज के जवानों के नाल उन्हां दी बहुत मुहब्बत सी, ते वो कहिंदे सन कि वो फौज ज्वाइन करना चाहते सन। इसे करके फौज के ही विषय से उन्होंने प्रहार फिल्म बनाई ते डायरेक्ट कीती सी।
1: कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बहुत पहले, वो तो मैं कर नहीं पाया। वहाँ खड़की में, मैं पुणे में जाते हुए खड़की जो लगता है, जब भी कोई मैं जवान देखता था उनका सामान उठाओ या कुछ करो, उनको सलाम करो जहन में था, लेकिन जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए वैसे वो जो हमारे सिविल एरिया में जब आ जाते हैं तो उस तरह की उनकी इज्जत नहीं की जाती है, ऐसे मुझे लगता था। और फिर वो लगातार जब हमारे यहाँ वॉर होती है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, कम हो जाता है, हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं, उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफी वक्त गुजारा, वहाँ पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी।
0: सो जी, नाना पाटेकर होरां दी अदाकारी हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों च जिंदा रहेगी और इंसानियत के लिए जो

थ्री इडियट्स फिल्म का यह गीत तुसी सुन रहे सी आकाशवाणी जलंधर दे सोनी स्वर प्रोग्राम च ते साडे देश विच जो विकास का गीत गूंज रहा ना जी ये लई असी जानते हैं कि साडे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां दा बहुत वड्डा हाथ है जी। पिछले 25 सालां तों ओ देश दे लई पूरे समर्पण दे नाल काम कर रहे ने और असी देखते हैं कि जो योजनावां जो नीतियां देश दे विकास दे लई घड़ियां गईयां उन्हां दे सार्थक नतीजे साडे सामने आ रहे ने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होरां ने जनधन योजना दे नाल हर किसी का बैंक खाता खोलिया जिस करके जो भी सरकारी सहूलतां ने वो सीधा गरीब दे खाते तक पहुंचदियां ने, कोई विचोलगी नहीं हुंदी और इहदे कारण इस योजना दे कारण सारे देशवासियां दे खाते खुले ते जो आपां कहिंदे हुंदे आ कि विकास दा जिहड़ा चानण है वह मुल्क दे अखीरले नागरिक तक भी पहुंचना चाहिए वो इस योजना ने सार्थक करके विखाया। सो जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तनदेही दे नाल देश दे विकास लई देश दी तरक्की दे लई काम कर रहे ने, असी सारे रल मिल के इसे जज्बे इसे जनून दे नाल काम करदे आ देश नूं विकास दीआं लीआं ते तोरीए ते विकसित भारत दा सुपना जल्द तो जल्द पूरा करिए। इस सुनेहे दे नाल अज दा सोनी स्पेयर प्रोग्राम खत्म करन दी अपने दोस्त वीरेंद्र नूं दे दिओ इजाजत। नमस्कार।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਹ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਔਰ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद के अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार GST को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
5: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले

0: में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष में बताते हैं,
1: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल परिसेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत,

0: लगातार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष में बताते हैं,
1: दूर दराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल परिसेवा हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: ये दोनों केंद्र योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँव में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रूपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग गालिम लोशन
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। टीडीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी

0: वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ाने अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही लो रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु

0: 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Partikar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन में अमन देव पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय दे शिखर सम्मेलन दे समापति समागम च शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दे इलाज लई दवाइयां दी सप्लाई ते विक्री ते मुनाफे दी सीमा 30% तक तय कर दित्ती है। इस नाल दवाइयां दी कीमतां विच 70% तक दी कमी आउण दी संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी ते पश्चिम बंगाल दीआं 5 विधानसभा सीटां ते असाम दी 1 लोकसभा सीट लई जिमनी चोणां लई वोटां दी गिणती शुरू हो गई है। उग्गे अदाकार नाना पाटेकर दा अंतम संस्कार महाराष्ट्र दे पुणे च पूरे सरकारी सन्मान नाल कर दित्ता गया। ते क्रिकेट विच भारत ते वेस्ट इंडीज विचकार 5 2020 मैचां दी लड़ी दा दूजा मैच अज शामी रांची विच खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शामी नवी दिल्ली च महिला ते बाल विकास मंत्रालय वालों कराए जा रहे 2 रोज़ा सम्मेलन के समाप्ति समागम च शामिल होंगे। कल शुरू हुए इस सम्मेलन में सारे राज्यों के सियासी आगू ते महिला ते बाल विकास खेत्र नाल जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण अनुसार आयोजित किए जा रहे खेतरी सम्मेलन की लड़ी में दूजा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहयोगी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय तरजीहां प्रति समूहक जिम्मेवारी की भावना को बढ़ाना ते केंद्र ते राज्य विचकार बेहतर तालमेल रही टीचों की प्राप्ति में तेजी लाना है। इस सम्मेलन 4 मुख्य विषयों पोषण, मुढ़ली सिक्ख्या, बाल सुरक्षा ते औरतों की सुरक्षा ते शक्तिकरण ते केंद्रित है। इस पहलकदमी तहत केंद्र ते राज्य सरकारां दे वख-वख हिस्सेदार खेतरी तरजीहां ते विचार वटांदरा करन लई इको मंच ते इकट्ठे हो रहे ने। इस विच बेहतरीन अभ्यासां नूं सांझा करन, स्कीमां नूं लागू करन विच आउण वालियां चुनौतियां दे हल अते चंगे शासन ते सेवा प्रदान करन दी प्रक्रिया नूं बेहतर बनाउण लई समाबद्ध कार्रवाई ते सहमति बनाउण ते वी जोर दित्ता जा रिहा है। सरकार ने कैंसर के इलाज लई दवाइयां दी सप्लाई ते विक्री ते मुनाफे दी सीमा वध तों वध परचून मुल MRP दे 30% तक सीमित कर दित्ती है। रसायण ते खाद मंत्रालय नूं उम्मीद है कि इस कदम नाल दवाइयां दीआं कीमतां विच 70% तक दी कमी आएगी, जिस नाल कैंसर दे मरीजां दी सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। जिथे कैंसर के इलाज लई सूचीबद्ध जरूरी दवाइया पहले ही सरकार वालों निर्धारित कीमत दी सख्त हद अधीन ने, उथे ही यह नवा फैसला मुनाफे की हद नूं सीमित करके गैर सूचीबद्ध कैंसर दवाइया लई भी कीमत सुरक्षा का दायरा वधाएगा। सेहत सेवाओं बारे डायरेक्टोरेट जनरल अधीन कामकारी माहर कमेटी वालों दवाइया की सूची नूं अंतिम रूप दिते जाण तों बाद राष्ट्रीय दवा कीमत अथॉरिटी एक अधिकारित नोटिफिकेशन जारी करेगी। भारत विच कैंसर के मामले वध रहे हैं। आबादी के हर लख लोगों विचों लगभग 60 लोग इस तों प्रभावित हो रहे हैं। कैंसर का इलाज मरीजों ते उन्हां दे परिवारों ते भारी वित्ती बोझ पाउंदा है, जिन्हां नूं अक्सर वड्डी रकम खर्च करनी पैंदी है। वस्तु ते सेवा टैक्स GST कौंसल ने टैक्स अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म कर दिता है। कौंसल ने मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दी है। कल नवी दिल्ली में GST कौंसल की मीटिंग तो बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कौंसल ने गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म करने और GST अधीन मुकदमा चलाने की सीमा वधाने की सिफारिश की है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: GST परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: जुर्माने ते कैद बारे फैसला समर्थ अदालत दे विवेक ते छड़ दिता गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरां विच कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने अगे कहा कि कौंसल ने नोटिसां ते कार्रवाइयां लई सांझे मापदंडां दी सिफारिश की है। हुण 10,000 दी मुद्रा सीमा तो घट लई नोटिस जारी

जी प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और पहला जिहड़ा गीत तुहानू सुनाण जा रहे हैं उन्होंने लिया गया फिल्म दिल विल प्यार व्यार तो जिहदे विच जस्सी गिल ने इस गीत नूं गाया है, जतिंदर शाह ने इहदा संगीत दिता और लिखिया गुरपिंदर गिल होरां ने। तो आओ फिर सुनिए जस्सी गिल दा गाया यह गीत।

के पचासे झटके हो शेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला चांद में झुमका चाल में झुमका कमर

है भानु रेखा गणेशन। और रेखा जी का जोड़ा जन्म है ना वो 10 अक्टूबर 1954 चेन्नई दे विच होया सी, यानी कि कल उन्हां दा जन्मदिन आने वाला है। तो अज का ये जो प्रोग्राम है ये रेखा जी उत्ते डेडिकेटेड है, इसे करके इस गीत नू अज प्रोग्राम की शुरुआत दे विच चलाया। तो आओ फिर इस गीत नू पूरा सुनते हैं और होर गल्लां करते हैं रेखा जी बारे, उन्हां दी जिंदगी बारे। सब तो पहले ये गीत जिहड़ा उन्हां दा सब तो हिट गीत रहा, जिहदे तो उन्हां नू पहचान मिली।

दीवाने मस्ताने ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा

खरे खरे जाती है क्यों परे परे तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बचा दूं मैं आज अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए तुझको दिखा दूं मैं चीर पर चीर जला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले

0: गया दिल का टूटा के पचासी चक्कर तेरा
1: रंग है नशीला रंग है नशीला रंग है नशीला

जी असी गल कर रहे हैं रेखा दी, महान अदाकारा रेखा जिन्हों का कल जन्मदिन है, और आकाशवाणी परिवार वालों आकाशवाणी जलंधर वालों उन्होंने जन्मदिन की मुबारक एक दिन पहले दे देने। अज मेरा यह प्रोग्राम है तो मैं क्या जी पहले ही उन्होंने जन्मदिन की मुबारक दे दिए, और जो उन्होंने गल करिए तो उन्होंने जोड़ा पिछोकड़ है वो एक अदाकारा फैमिली तो ही सी। उन्होंने पिता जी महान अभिनेता जैमिनी गणेशन और माता जी अभिनेत्री पुष्पवल्ली जिहड़े दक्षिण भारत दे विच बहुत वड्डा नाम रखते ने। और बचपन च वैसे उन्होंने कोई खास रुझान सीगा नहीं एक्टिंग वन, लेकिन वो चाहते सन कि वह एयर होस्टस बनन, लेकिन समय ने ऐदा दी करवट लई कि छोटी उम्र च ही उन्होंने पढ़ाई छड के 12 साल की उम्र च तेलुगु फिल्म रंगला रत्नम जो 1966 आई थी एक बाल कलाकार के रूप में काम किया, और फिर उस तो बाद 1970 के नेड़े तेड़े वो हिंदी फिल्मों में आ गए। पर जो हिंदी फिल्मों आए सन वो उदो उन्नी ग्लैमरस नहीं सी, और

0: आदि वन विद्यालय की ले लो चोली बेकाले
1: जेड़ी गल असी बोलचाल दी भाषा च नहीं कर सकदे लोक गीतां दा सहारा लेके बखूबी कह दिंदे आ। लोक गीतां दे वख-वख रूप ने जन्म तो लेके अंत समय तक जिन्हां विच

चल रहा है जी, गाता रहे मेरा दिल, और गल कर रहे हैं रेखा जी होरां दी। तो रेखा जी दी जिहड़ी जिंदगी है ना, वो हमेशा सुर्खियां दे विच रही है, चाहे उन्हां दी निजी जिंदगी होवे चाहे पर्दे दी जिंदगी होवे। और पर्दे ते जदों उन्हां दी जुड़ी द ग्रेट सुपरस्टार द स्टार ऑफ मिलेनियम यानी कि अमिताभ बच्चन होरां नाल बनी ना, तो यह गल घर घर पहुंची। इस जोड़ी नू इन्ना सराहाया गया कि लोकां ने अपने मन दे विच यह सोच लिया कि यह जिहड़ी जोड़ी है यह जोड़ी असल जिंदगी दी जोड़ी है। लेकिन असल जिंदगी दे विच मुकेश अग्रवाल होरां दे नाल रेखा जी का विआह होया, लेकिन विआह तो कुछ देर बाद उन्हां दे पति जी का जिहड़ा दुखद निधन हो गया। तो एक बार फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ा प्राइवेट कर लिया, लेकिन पर्दे के उत्ते जिहड़ी उन्होंने जोड़ी अमिताभ बच्चन होरां नाल बनी ना, उन्होंने हमेशा ही सलाम किया गया। अज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और जे गल सलाम भी करिए मुकद्दर का सिकंदर का यह जरा गीत है, ये वाकई सलामी देने वाला गीत है, क्योंकि ये जो उन्होंने डांस किया तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डांसर दे वजह गाने उन्होंने तैयार किया। और इस गाने मजरे का एक रूप पेश किया, और उस तो बाद अमूमन हर फिल्म दे विच उन्होंने उत्ते इदा दे गीत फिल्माए गए। तो फिर लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दा गाया अमिताभ और रेखा दे

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबन तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: असी गल कर रहे हैं रेखा जी होरां दी और रेखा जी की जिंदगी दे विच सब तो खूबसूरत पल, सब तो सुनहरी पल आया साल 1981 दे विच जदों निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान रिलीज हुई। लखनऊ की एक मशहूर शायरा ते बनी है फिल्म उमराव जान और इस किरदार नू रेखा ने जीवंत कर दिता। दिन रात ये ते मेहनत की और इस किरदार लई उन्होंने खास तौर ते उर्दू सीखी, कथक दियां बरीकियां सीखियां और उन्हां दी संजीदा अदाकारी, अखां दे इशारे और नज़ाकत दा ऐसा जादू चलिया कि उन्हां नू 29वें फिल्म पुरस्कार यानी कि नैशनल फिल्म अवार्ड दे विच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस एक्ट्रेस दा जिहड़ा अवार्ड है उहदे नाल नवाजा गया। और इस फिल्म दे सारे गीत बहुत हिट रहे। एक खास गीत जिहड़ा ये दसदा है कि वह सिर्फ अदाकारी दे नाल ही नहीं अखा दे नाल भी गल करते सन। आशा भोसले तक आया फिल्म उमराव जान तो लिया गया एक गीत।

0: ਇਸੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਗਾਤਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰੁਪਦ ਗਾਇਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਰਾਗ ਹੋਏਗਾ ਅਸਾਵਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗ ਭੈਰਵੀ। ਪਖਾਵਤ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਦਿਲਰੁਬਾ 'ਤੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਤੰਬੂਰੇ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਧਨਾ।

0: डर समझ रहा है? नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डस ले तो

0: प्रोग्राम चल रहा है जी। हेलो फरमाइश 0181-23-4273 इस नंबर ते कॉल करो, जुड़ जाओ साडे नाल जिस तरह की ये कॉलर दोस्त जुड़े ने। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: सोनलाल
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सोनलाल जी ये दसो कि अज केड़ा गीत सुनना चाहते हो? नाना पाटेकर जी, हाँ नाना
1: पाटेकर
0: जेडे
1: काली जहां
0: जी जी बिलकुल श्रद्धांजलि है। और असि भी तुहाडे सारयां दे नाल एक बहुत उमदे कलाकार जी। ते आओ फिर उन्हां दी एक फिल्म आई सी 1996 खामोशी, ते जतन ललित ने दे गीत नु संगीत दिता सी, ते मजरू सुल्तानपुरी ने इहदे बोल लिखे सन। वह गीत तुहानू सुनाने आ, उहदे विच इहनां दी अदाकारी बहुत वधिया सी, एक मूक दे रूप दे विच उह बने सन, और लेकिन अदाकारी अज तक याद कीती जांदी है। इह साडे वल्लों श्रद्धांजलि है, तुसीं कॉल कीती है, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद।
1: बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया
0: शुक्रिया जी।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी थोड़ा सारिया का अपना हैलो फरमाइश और आखिरी दे कुछ पल रह गए ने घड़ी दे मुताबिक सिर्फ 11 मिनट ते 11 सेकंड बचे ने साढ़े अगले कॉलर दोस्त आ गए ने नमस्कार जी कौन बोल रहे ने सत श्रीकाल जी कौन बोल रहे ने
1: मैं याद नहीं कह रहा पिंड कलारा जी लाभा जी मैं पटियाले में बोल रहा जी
0: अजैब सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा प्रोग्राम दे विच तो फिर आज गीत केड़ा सुनना चाहते हो
1: मैं जी इशारा गीतकार मयूर गुरदानपुरी संगीतकार कल्याण जी नंद जी आवाज हम गए मेरा केशव मौसम भी है बाबा भी है
0: अरे वाह जी तुसी जरा इशारा कीता ना खास मकसद है कि ना सिर्फ तुसी गीत सुनो बल्कि वो गीत दे बारे पूरी जांच पड़ताल भी करो और वो बारे पता भी होना चाहिए
1: पूरी जानकारी देंगे जी यही की कमी है
0: बिल्कुल जी बिल्कुल चलो थोड़ा मनपसंदीदा गीत सुनान जा रहे हैं तुसी साडे नाल जुड़े और ये जानकारी भी साझी की है बहुत बहुत धन्यवाद

0: खुशियों की बारात को गली चलते दुल्हन
1: जी। महेंद्र कपूर दे गाए इसे गीत नाल हैलो फरमाइश प्रोग्राम हुणे इत्थे ही खत्म हुंदा है। अपने दोस्त गौरव नूं प्रोग्राम नूं खत्म करन दी दिओ इजाजत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ही जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक सवेर दे 11 बज रहे ने। आओ असीं तुहानूं लै चलदे हां साडे दिल्ली केंद्र जिथों तुसीं सुणोगे समाचार हिंदी दे विच। कुछ पल दा इंतजार ते फिर होणगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की डेजीनगर में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि तमिलनाडु की मदुरांतकम सीट पर टीवीके और दारापुरम पर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। असम की लोकसभा सीट नगांव पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़े सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को

0: प्रदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन के इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरल, माही, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जलंधर पैंती।

सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा तो विनय मोहन खारवन मीनाक्षी पलौमा डॉक्टर ईशानी होना मैसेज है। अगला मैसेज सानू मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो मिले है। यह मैसेज सानू मिले है जी, इन्होंने कादिया तो किया। प्रीति शर्मा डॉक्टर अशोक भारती अदीब बिंदू पापा बिट्टू कृपा करके कहिंदे जी सानू जिहड़ी साडी फरमाइश आ जरूर सुनाई जावे। कई बार दोस्त गीत सानू भेजते ने पर वह गीत साडे कोल कंप्यूटर दे विच नहीं हुंदे जिस कारण उन्हां दी फरमाइश असीं नहीं पूरी कर सकते, पर इसका मतलब यह नहीं हुंदा कि तुहाडी फरमाइश नूं अनगोलिया किया जा रहा है। ते अगला मैसेज सानू मिले जी पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी तो राम सिंह तगड़ भिंदर कौर तगड़ कमलप्रीत सिंह तगड़ पोता इन्हां दा ते मीता रानी तगड़ पोती है जी गुरतेज कैंत पिंड जलूर। इसे तरह विसाखा नंबरदार पिंड बुरज ते पूरा ही तगड़ परिवार साडे इस प्रोग्राम दे विच पहुंच गया। पिंड खाने की ढाब मलोट तो शमशेर सिंह कौलधार जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर तरनवीर सिंह ते मनताज उन्हां दा मैसेज है। यह अगला मैसेज सानू मिलिया जी पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बालकृष्ण शर्मा परवीन शर्मा मनीष शर्मा राहुल शर्मा। इसे तरह अगला मैसेज है जी साडे कोल मिलिया वैष्णव कलोनी सनावद तो मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमाश खत्री रमेश गोड़ ते मोहम्मद शादाब खत्री उन्हां दा। इसे तरह बागपत उत्तर प्रदेश तो सानू मैसेज मिलिया संजय टिंगिया नमन टिंगिया अपार टिंगिया उन्हां दा। अगला मैसेज असीं लै रहे आ जी इह सानू मिलिया विजय तंवर ते ममता मंडी खरड तो इन्हां ने सानू मैसेज भेजिया है। सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सनी मनी काका जनक नगर जलंधर तो मैसेज कर रहे ने। न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास सत्या देवी पोतरी वाणिया पोतरा अरमान अभिताज कैनेडा तो दैविक ते काका गुरनवास ते पूरा ही परिवार साडे इस प्रोग्राम दे विच पहुंच गया। तो हुण असीं भी पहुंच गए अगली फरमाइश वल सतेंद्र सरताज की आवाज दे विच प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: आकाशवाणी ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

0: तुझे खबर
1: के ना नाल साडे कदे बोलिया
0: सते रब कोलों डर
1: जे बचोला जी ने घर टोलिया
0: तेरा सर जे खबर
1: हस के ना नाल साडे कदे बोलिया।

लहर, अजय लहर, एंजल लहर, लाडला पोता अरनव लहर, उन्हों का मैसेज सानू मिलिया मनीला फिलीपीन तो। इसे तरह यह मैसेज सानू मिलिया है जी पिंड चंदमारी तो, लिखण वाले ने मंगत राम जगदीश राणी, संदीप मिड्डा, ममता राणी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या। ते हुण अज ते इस प्रोग्राम दे आखरी गीत नू लैके तुहाडे तक पहुंच गए अपनी मंजिल ते जी गुरदास मान दी आवाज़ दे विच। अज ते इस प्रोग्राम दा आखरी गीत ते इसे गीत दे नाल मैनू पूजा हंडा नू अज दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी इत्थे ही खत्म करन दी इजाजत दे दिओ। नमस्कार।

0: ਹੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगुन को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मदुरांतकम में टीवीके और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मदुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी टीवीके पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े चार डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ईजीएआर, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम माहे दक्षिण आंध्र कर्नाटका तमिलनाडु पुदुचेरी कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश झारखंड ओडिशा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियो 343.873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल बहुत जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: घट समय विच वधेरे लाभ असि क्लिक ते कमाल है
2: फसिया
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो आरबीआई कहंदा है
4: जानकार बनो सुचेत रहो
5: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने दी जिहड़ी खरीद है ओ 1 अक्तूबर

0: जी जी
1: डॉक्टर सुरिंदर कौर ने बड़े ही जिन्हों कहते ना सिंपल अल्फाजा दे विच समझा देता कि जिंदगी अज दे विच जियो, ना पिछला सोचो ते ना अगे बारे सोचो, जो अज है उनू जियो
0: जियो। और जदों असी अज नू जीने आ ते सही तरीके नाल जीने आ ते साडा जिहड़ा भविख आ ओह आपे सुखाला हो जांदा।
1: बिल्कुल, ते इदां करदे आ क्योंकि डॉक्टर सुरिंदर कौर जी भी इस वेले अपना प्रोग्राम सुन रहे सीगे, तो एक गीत उन्हां लई ते साडे सुनन वाले स्रोतियां लई।

0: வணக்கசி சுனசி பரிவாரிக் ப்ரோக்ராம் வசதி வீடி ਮੇਰੇ 347 ਸ਼ਰੀਆ 6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार E. विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि

0: पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मेरे वेब 347.6 मीटरियन 873 किलो हर्ट्स, टीआरएम 854 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा था। ए जलंधर केंद्र है। लो हुण तुहानूं दस दईए साडे इस मीटर तो अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दा वेरवा।

हुण तों थोड़ी देर बाद दुपहर 1:15 बजे तों लैके 2:15 बजे तक तुसीं सुणोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस प्रोग्राम दे दौरान खबरां आपो अपने समें ते नशर कीतियां जाणगियां। दुपहर 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसीं स्वर्णी अमला ते साथियां दे गाए लोक गीत सुणोगे। चार बज के 2 मिनट ते स्वर्ण नूरा दे गाए सुफियाना कलाम समात फरमाओगी। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण तुसी सरवण करोगे शाम 4:30 बजे। साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे इतिहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच काम दियां गल्लां दे नाल बाहरी परजीवियां नाल पशुआं च होने वाले नुकसान इस विषय के उत्ते डॉक्टर हरकीरत सिंह जानकारी देंगे। तुहाडी पसंद दे गीतां दा फरमाइशी सिलसिला सब की पसंद भी पेश किया जाएगा। शाम 7:10 ते तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा। 7:45 ते सबरंग प्रोग्राम तहत अज तुसी मेरा नया अफसाना सुनोगे। अफसाना निकार होंगे डॉक्टर सालिक जमील बराड़। 8:00 बजे कुछ हिंदी फिल्मी गीत सुनाए जाएंगे।

0: हम चिट्ठियां मिठियां। रात 11:10 ते समा रहेगा लाइव फोन इन प्रोग्राम सौगात दा। इसी पर साड़ी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उना दे प्रसारण समय दा वेरवा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: मेरा वेब 347.673 किलोहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। साडी स्टूडियो दी घड़ी मुताबक इस वेले दोपहर के ठीक 1:10 होण जा रहे ने। हुण तुसी प्रादेशिक खबरां सुनोगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हूँ तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पंजाब सरकार ने गौरव यादव नूं पंजाब दे पुलिस महानिदेशक वजों नियुक्त करन दे हुक्म जारी कीते ने। उन्हां नूं घट्टो घट 2 साल दे कार्यकाल नाल नियमित तौर ते नियुक्त कीता गया। इस तों पहलां उह साल 2022 तों कार्यकारी DGP वजों काम कर रहे सन। पंजाब दे गृह विभाग वल्लों अज जारी कीते गए हुक्म च कहा गया कि संघ लोक सेवा कमिशन UPSC वल्लों सिफारिश कीते गए 3 अधिकारियों दे पैनल विचों पंजाब दे राजपाल वल्लों श्री यादव नूं DGP नियुक्त कीता गया। सिफारिश कीते गए पैनल विच होर 2 अधिकारी डॉक्टर शरद सत्या चौहान ते हरप्रीत सिंह सिद्धू सन। ये तीनों 1992 बैच के IPS अधिकारी ने। पंजाब सरकार वल्लों मेरी दुकान मेरे नाम योजना की शुरुआत की गई है। इस नाल नगर निगम नगर कौंसल नगर पंचायत तहत 12 सालों तो वो समय तो किराए च लीज से कानूनी तौर पर दुकान चला रहे दुकानदारों इन्हों दुकाना के मालिक बनने का राह पदरा हो गया। कल पंजाब भवन विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इसका ऐलान करद्या स्थानक सरकार बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इस योजना तहत योग दुकानदार अपनी दुकानों के मालकी हक प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। उन्होंने दसिया कि 1 अप्रैल 2020 तो पहला के 12 सालों के कानूनी कब्जे को साबित करने वाला कोई भी दुकानदार इस योजना लिए अर्जी देने के योग होगा। पंजाब सरकार वालों शुरू की गई मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना तहत हुण तक करीब 3,722 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्री महिलावां के बैंक खात्यां च ट्रांसफर की जा चुकी है। समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कल दस्सिया कि पहले गेट तहत जुलाई अगस्त ते सितंबर महीनों लिए 75 लाख तो वध महिलावां दे बैंक खात्यां च 2,602 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि सीधी जमा करवाई गई है। इस तों इलावा दूजे गेट की पहली किश्त तहत 32 लाख तो वध औरतां नूं 1,118 करोड़ 93 लाख रुपए भेजे गए ने। पंजाब सरकार वल्लों सरकारी मैडिकल कॉलेज पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल विखे बनाया जा रहा क्रिटिकल केयर ब्लॉक नवंबर महीने च मरीजां लई शुरू कर दिता जाएगा। उन्हां कहा कि सूबे दे बाकी 22 जिलों विच भी क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं तां जो लोगों नूं बेहतर सेहत सहूलतां मुहैया करवाईआं जा सकन। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इसका प्रगटावा कल पटियाला सरकारी मैडिकल कॉलेज विखे COVID-19 महामारी दौरान अमृतसर फरीदकोट ते पटियाला दे सरकारी मैडिकल कॉलेजां च सेवावां निभाउण वाले 80 कोरोना वॉरियर्स नूं नर्सिंग स्टाफ वजों भर्ती करन लई नियुक्ति पत्र वंडन मौके कीता। जलंधर डाक मंडल वालों अज तो 15 अक्तूबर तक राष्ट्रीय डाक हफ्ता 2026 मनाया जा रहा है। इस दौरान वख-वख गतिविधियां राही डाक वित्तीय ते नागरिक केंद्रित सेवावां प्रदान करन विच भारतीय डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका बारे जागरूकता पैदा की जाएगी। डाक हफ्ते दौरान वख-वख गतिविधियां भी करवाईआं जाणगीआं। सूबा सरकार वालों श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब न समर्पित विशेष उपराले तहत फाजिलका जिले के अबोहर स्थित DAV कॉलेज विखे बीती शाम एक शानदार ते अलौकिक ड्रोन शो करवाया गया। इस मौके करीब 500 ड्रोना राही आकाश में मनमोहक दृश्य पेश किए गए। इस मौके हलका इंचार्ज डॉक्टर सुहानी डोडा ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का जीवन ते उन्हां दी पवित्र बाणी समुची मनुखता नूं

0: एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 343.6 MHz 800 किलोहर्ट्ज़ से हूँ पेश है प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

जय हिंद भाजी वीरो, तुहाडे मनोरंजन दे लई हिंदी फिल्मां दे विचों गीत लैके हाजिर होए आ। ते प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच गाया, अभिनेत्री फिल्म दे विचों लिया। इस गीत नूं लिखिया आनंद बख्शी ने ते संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल दा।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
5: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਨੇ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮਜਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ RT ਵਰਮਨ ਦਾ।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावडी असेंबली सीट का जिमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की एक सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की तरफ से मुजवजा मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी है। आज सुबह नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर मुजाहिरे या दीकर प्रोग्राम मुनक्द करने की इजाजत की दरखास्तों को कम से कम 10 दिन पहले दाखिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले CJP को इस जगह पर मुजाहिरा करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो मजकूरा रहनुमा खतूत और अपनी तरफ से किए गए तहरीरी वादों पर अमल करने में नाकाम रही। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि इजाजत न देने का फैसला पार्टी की पिछली नाकामी के तनाजुर में किया गया है कि वो नई दिल्ली इलाके में पुलिस के रहनुमा खतूत और उसके अपने तहरीरी वादों, नीज मौजूदा नज्म जब्त की सूरत हाल, अवामी हिफाजत और ट्रैफिक साबतों पर अमल न कर सकी।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल इस इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं, जिनकी रूह से अवामी हिफाजत और अमन कानून बरकरार रखने के लिए जरूरी बंदिशें लागू हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दिल्ली पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ मौजू कार्रवाई करेगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद से सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां जो अपने पहले स्टेशन से रवाना होंगी और उन्हें नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह और दोपहर 2 बजे के दरमियान पहुंचना है, उन्हें उनके पहले स्टेशनों पर ही मनसूख कर दिया गया है। रेलवे की वजारत ने बताया कि यह फैसला इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में सड़कों पर शदीद इम्कानी ट्रैफिक हजूम के तनाजुर में लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में ख्वातीन और बच्चों की तरक्की के बारे में महकमा जाति सरबराह कौन

0: कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। ये दो रोजा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई थी, जिसमें सभी रियासतों के सियासी रहनुमा और खवातीन और बच्चों की तरक्की से मुतालिक अफसरान शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: महकमा जाती सरबराह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका तसव्वुर वज़ीर आज़म ने इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मजबूत बनाने, मुल्क की तरजीहात की इज्तिमाही जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और करीबी मरकज रियासत शराकत दारी के जरिए इसके नतीज में तेजी लाने के लिए पेश किया था। इस कॉन्फ्रेंस में चार अहम मौजूदात पर तवज्जो दी जा रही है, जिनमें तग़ज़िया, इब्तदाई तालीम, बच्चों की हिफाजत, खवातीन की हिफाजत और उन्हें बाइख्तियार बनाया जाना शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शोभा जाती तरजीहात पर बातचीत करने, अच्छे तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ करने, चैलेंजों से निपटने पर अमल दरामद और बेहतर हुक्मरानी और खिदमात बहम पहुंचाने से मुतालिक मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर कार्रवाई से इत्तेफाक करने के लिए मरकज और रियासती सरकारों के मुतालिका फरीकें यकजा होंगे। न्यूज डेस्क से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी हुकूमत ने बच्चियों को रहम मादर में ही कत्ल कर दिए जाने की रोकथाम, बच्चियों की हिफाजत और तालीम को यकीनी बनाने और लड़कियों के लिए बराबरी के मौकों को फरोग देने के मकसद से साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम शुरू की थी। पिछली दहाई में ये मुहिम एक अवामी तहरीक बन गई। इस मुहिम में लड़कियों के जिंदा रहने, उनकी हिफाजत, तालीम और मजमू तरक्की पर तवज्जो दी गई है। इस मुहिम के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले, तालीम जारी रहने, महफूज जचगी और सफाई सुथराई को भी फरोग दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज सिंगापुर के सरकारी दौरे पर रवाना हुई। अपने तीन रोजा दौरे में वो सिंगापुर के रहनुमाओं, तिजारत और सरमायाकार बिरादरी के सीनियर अरकान और आलमी इदारों के सरमायाकारों के साथ बहुत सी आला सतह की सरगर्मियां अंजाम देंगी। अपने दौरे में मोहतरमा सीतारमन सिंगापुर के सदर तरमन शनमुगा रत्नम और वजीर आजम लॉरेंस फोंग से मुलाकात करेंगी। वो सिंगापुर के नायब वजीर आजम गान किम योंग और वजीर खारजा डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगी। मुज़ाकरात में भारत सिंगापुर जामे दिफाई शराकत दारी के अहम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इलाकाई फौज के यौम तासीस के मौके पर इसके सभी अहदेदारों, रिटायर्ड अहलकारों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इलाकाई फौज नागरिक भी सैनिक भी की मिसाल पेश करती है, जो गैर मामूली अजायम के साथ मुल्क की खिदमत के लिए मामूली शहरियों के अज़्म की अक्कास है। वज़ारत खारिजा ने कहा है कि अमरीका के लेबर महकमे का कुछ कंपनियों के लिए मुस्तकिल लेबर नोटिफिकेशन प्रोग्राम PERM से मुतालिक फैसला H-1B वीजा प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि परम दरखास्तों को मुअत्तल किया जाना बजाती खुद मौजूदा H-1B प्रोग्राम या H-1B वीजा के हामिल अफराद और उन पर मुनहसर अफराद की हैसियत के जवाज को मुतासर नहीं करता। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज डाक के आलमी दिन के मौके पर सभी डाक सेवकों को मुबारकबाद दी है और मुल्क के तई उनके पुरअज़्म खिदमत के लिए तशक्कुर का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंधिया ने यह बात दोहराई कि डाक सेवा ही जन सेवा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि डिजिटल मुवासलात के दौर में इंडिया पोस्ट भी डिजिटल तब्दीलियों को अपना रहा है। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के टेलीकॉम और डिजिटल शोबों में पिछली दहाई के दौरान काबिले जिक्र तब्दीली आई है और ये शोबे आलमी सतह पर नुमाया हुए हैं। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया में ऐसा पांचवां मुल्क भी बन गया है जिसने अपने तौर पर 4G नेटवर्क तैयार किया है। पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी असेंबली हलके के लिए ज़मीनी इंतखाब में डाले गए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने 8,482 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की है। ये सीट पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने खाली की थी। अशोक आनंद को कुल 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीब तरीन हरीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनयगम को 4,876 वोट मिले। तमिलनाडु के असेंबली हलके मदुरांतकम और धरापुरम में होने वाले जिमनी चुनाव में हुक्मरान टीवी के सबकत बनाए हुए हैं। मदुरांतकम में वोटों की गिनती के छठे दौर में टीवी के उम्मीदवार मरगातम कुमार वेल 23,884 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं, जबकि डीएमके 15,724 वोटों के साथ दूसरे मकाम पर है।

0: धरापुरम हलके में वोटों की गिनती के 11वें दौर में टीवी के उम्मीदवार 31,327 वोटों से आगे हैं, जबकि डीएमके के उम्मीदवार ने 25,841 वोट हासिल किए हैं। एआईएडीएमके के उम्मीदवार के भानुमति ने 21,363 वोट हासिल किए हैं। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 टी20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इफ्तिताही मुकाबला जीतने के बाद, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर मुजवजा एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। अमन कानून बरकरार रखने की खातिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 नाफिज की गई है। कल सुबह सवेरे 4 बजे और दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने पहले स्टेशन से ही मनसूख कर दी गई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में खवातीन और बच्चों की बहबूद के बारे में महकमा जाति सरबराह मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी असेंबली सीट पर जिमनी चुनाव जीत लिया है। 4 असेंबली हलकों और लोकसभा की एक सीट के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਤੀਸਰੀ ਕਸਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਦਾ

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
3: वही मोनू तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी
4: स्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण
0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी
3: वही मोनू तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी
5: ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੋ ਆਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਵੀ ਦਾ

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो मुझे
1: नहीं, खुद पे नहीं,

0: ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਸੱਤੇ ਪੇ ਸੱਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में IIT जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं

0: ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही हैं। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर

0: पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़े विधानसभा सीट 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोतियां दी जानकारी ली सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: मीडिया वेब 347.6 मीटर नेट 73 किलोहर्ट्ज, टीएनएम 854 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा इह जलंधर केंद्र है। हुण पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी स्वर्णी अमला ते साथियां दे गाए लोक गीत सुनोगे। सब तो पहला इना दा गाया लोक गीत सुनदे हां कमली यार दी।

तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बाबा बुले शाह दी काफ़ी तुसी स्वर्ण नूरा दी आवाज़ दे विच सुन रहे सी। आओ हुण एक होर बाबा बुले शाह दी काफ़ी समात फरमाने आ, सानू लगदा है यार नालू प्यारा।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार गुरबाणी विचार जेड़ा आकाशवाणी जलंधर तो बहुत लंबा अरसा चलता रहा, जदों वसीले नहीं सी हुंदे, लोग तकालां नूं अपना रेडियो ऑन कर लेंदे सी, ते अद्धे घंटे दा इह गुरबाणी विचार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जाता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था जिस संस्था ने प्रबंध गुरबाणी दे

अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। राग प्रभाती विच उचारित भगत कबीर जी का यह फरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1349 ते सुभायमान है ते सर्ब संजीवालता दे संदेश का ऐलान करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सर्ब सांझी बाणी है। कोई भी मनुख इस बाणी नूं जीवन विच अपना के भव सागर तो पार उतर सकता है। बाणी अनुसार सारी सृष्टि दे जीवां दा मां प्यो प्रभु आप ही है। सारे जीव उसकी संतान हन। उस सांझे बाप की कीर्ति करते हुए ही उस नाल एकमिक होया जा सकता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारे हुए शब्द विच उस पिता दी महिमा वड्याई करदे हुए उसकी कृपा वास्ते जाचना करदे हुए बेनती करदे ने कि केवल एक प्रभु ही साडा पिता है। असी उसे एक पिता दी संतान हाँ, बच्चे हाँ, बारिक हाँ, ते प्रभु तू ही मेरा गुरु है। ए मेरे मित्र सुन, मैं अपनी जिंद तेरे तो वारदी हाँ। मैनू प्रभु मिलन दी जुगत वाला उपदेश दे के राह दसो ताकि मैं दर्शन कर सकां। सुन मित्र, मैं तेरे चरणा दी धूड़ तो बलिहारे हाँ। ए मन तैनू ही समर्पित है। मैं आप जी दे चरण मल मल के धोवां ते अपना ए मन तैनू सौंप देवां। मेरे मित्र सुन, मैं तेरी शरण विच आ गया हाँ। प्रभु नूं मिलन वाला उपदेश दियो। हुण कोई माण नहीं, बस तेरी शरण पिया हाँ, तेरी ही रजा विच राजी हाँ। ए मेरे मित्र सुन, ए जिंद जान शरीर सब अर्पित करके ही दर्शन संभव हो सकते हैं। मैं भी इस राह ते तुर पिया हाँ। प्रभु ने कृपा कीती है। संतां दे उपदेश सदका मैनू प्रभु दा नाम मिठा लगता है। दास ते गुरु ने कृपा कीती है। हुण सबनी थाई जात कुल तो मुक्त ते सर्ब श्रेष्ठ प्रभु दे दर्शन दीदार हो रहे हन। सरवण करदे हां लता मंगेशकर ते आशा भोंसले होरां द्वारा गायन कीता होया ये शब्द। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई।

0: एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। इस शब्द गायन की तसी लता मंगेशकर अते आशा भोंसले होराने। श्री गुरु अर्जन देव जी गौड़ी सुखमणी महला पंजवा सिरलेख वाली बाणी दी 19वीं अष्टपदी दे 8वें पदे विच एक प्रभु दी उस्तत करन दा उपदेश दिंदे हन कि उस एक प्रभु दा जाप अते सिफत सलाह करो, उसे नू चेते करो अते मन विच वसाओ, उस एक प्रभु दी महिमा उसदे अनंत गुणा दा गायन करके करो, मन अते तन करके उसे दा ही जाप करो। ओ एक ही सबना विच आपे ही वर्त रहा है, इस सृष्टि उसे दा ही पसारा है, विस्तार है, उस एक नू आराध्या ही सारे पाप मुक जांदे ने, मन ते तन उस प्रभु दे रंग विच रत्ते जांदे ने, जिसने गुरु दी कृपा सदका उस एक नू जान लिया है, उस एक बारे जिसनू वी सोची आ गई है। सुनदे हां प्रिंसिपल हरभजन सिंह होरां पासों वार्ता। एकस के गुण गाओ अनंत।
1: ए अनमोल बचन गुरु अर्जुन देव जी दी उच्चारण कीती हुई बाणी सुखमनी साहिब जी दी 19वीं अष्टपदी दे 8वें पदे विचों हन, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 299 ते सुभाए मान हन। इन्हां बचना राही सतगुरु जी समझा रहे हन कि हे भाई, उस एक अकाल पुरख दे गुण गा जिस दे गुणा दा अंत नहीं पाया जा सकता। एकस तो भाव एक अकाल पुरख ही है। गुरु नानक साहिब जी भी बाणी अंदर इसे गल ते जोर देंदे हुए फरमाउंदे हन, साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। गुरमत दा प्रकाश होण तो पहला भाव गुरु नानक साहिब जी दे आगमन तो पहला बहुते लोग एक परमात्मा नाल जुड़न दी थां परमात्मा दियां बनाईयां हुईयां चीज़ां नाल जुड़े हुए सन। जिवें कोई सूर्य दी पूजा कर रहा सी, कोई चंद्रमा दी, कोई धरती दी, कोई तारियां दी, कोई दरियावां दी, कोई खास रुखां दी अते कोई खास पशुआं दी। पर गुरु नानक साहिब जी ने साडे सामने मूल मंत्र राही उस एक अकाल पुरख दे खास गुणा दा वर्णन इस तरह कीता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद। इस दे अर्थ विद्वाना ने इस तरह कीते हन कि अकाल पुरख एक है, उस वर्गा दूजा कोई नहीं। वो एक होने दे बावजूद सर्वव्यापक है, उसका नाम सदीवी होंद वाला है, वो सब का सिरजनहार है, अते सब विच पूरिया होया है। वो डर

हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जिय कै संग सहाई। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल

0: सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉ. जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मधुरंथकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 879 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहो तुहानू साडे दिन विच बाकी दे रहंदे प्रोग्राम्स ते उहनां दा प्रसारण समां दस दईए।

रात 8:10 ते स्टेट हुक प्रोग्राम सुनोगे जन सेवा तो देश सेवा तक। इस प्रोग्राम नु साडे आकाशवाणी पटियाला बठिंडा ते लुधियाना केंद्र भी नालो नाल प्रसारित करेंगे।

रात 8 बज के पंजाबी गीत सुनोगे। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 बजे एक नाटक सुनो, हिंदी नाटक सुनोगे एक फिर एक बार, लेखक सतीश टंडन। रात 10:02 ते फोन ते आधारित ते व्हाट्सएप ते आधारित ताड़ियाँ फरमाइशा पूरियाँ कीतियाँ जानगियाँ गीतां दियाँ प्रोग्राम होएगा तुहाडी फरमाइश रात 10:02 ते। समाचार ते मुख्य समाचार अपने निर्धारित समय ते वारो वार प्रसारित कीते जानगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: श्रोतियां दी जानकारी लिए सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: जिस तरह तुहानू पता ही है कि झोने की जिहड़ी खरीद है वह 1 अक्तूबर तो

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी ले सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं धोखाधड़ी वाले बीमा दाव्यां नूं रोकण लई मोटर दुर्घटना दाव्यां नाल संबंधित चार डिजिटल प्लेटफॉर्मां नूं आपस च जोड़न दा निर्देश दित्ता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों सारे विभागां नूं एशियन हाकी चैंपियन ट्रॉफी लई विश्व पद्धरी प्रबंध यकीनी बनाउण दे निर्देश। श्री गौरव यादव ने अज पंजाब दे पुलिस महानिदेशक वजों अहुदा संभालिया। डीजीपी ने चेतावनी दित्ती, सारे गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके कानून दे कटहरे च लिआंदा जाएगा। टीबी मुक्त भारत मुहिम तहत जलंधर विखे टीबी नूं खत्म करने विच शलाघायोग काम लई 91 पंचायतों नूं सन्मानित किया गया। ते क्रिकेट विच भारत ते वैसट इंडीज़ दरमियान 5 2020 मैचों की लड़ी का दूजा मैच अज शामी 7 बजे रांची च खेडिया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां नूं धोखाधड़ी वाले बीमा दाव्यां नूं रोकण अते मुआवजे दे निपटारे नूं तेज़ करन लई चार हफ्तियां दे अंदर अंदर मोटर दुर्घटना दाव्यां नाल संबंधित चार डिजिटल प्लेटफॉर्मां नूं आपस च जोड़न दे निर्देश दित्ते ने। इन्हां प्लेटफॉर्मां विच EDAR वाहन सारथी अते बीमा सूचना ब्यूरो शामिल ने। इह हिट एंड रन मामलियां अते PM राहत योजना नूं वी कवर करनगे। अदालत ने सारे राज्यां नूं बिना देरी दे EDAR पोर्टल उत्ते संबंधित डेटा अपलोड करन दे निर्देश भी दिते ने। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला अते प्रसन्ना बी वराले दे बेंच ने कुछ बीमा कंपनियां दे मुखियां नूं पहलां दे अदालत दे निर्देशां दी पालना करन विच असफल रहन लई नोटिस भी जारी कीते ने। मामले दी

0: सुनवाई 27 नवंबर नू होवेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज सारे विभागों 27 अक्तूबर तो 5 नवंबर तक एशियन हाकी चैंपियंस ट्रॉफी लिए विश्व पद्धरी प्रबंध यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस विच निर्विघन तालमेल, अंतरराष्ट्रीय म्यारी सहूलत, शहर के सुंदरीकरण से मेहमान नवाजी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने जनतक उत्साह पैदा करने लिए राजव्यापी ट्रॉफी टूर के विद्यार्थियों की वध तो वध भागीदारी का भी सदा दिता है। उन्होंने कहा कि सूबे में अंतरराष्ट्रीय खेड समागमों की मेजबानी में नवे मापदंड स्थापित करने चाहिए ने। अज चंडीगढ़ विखे समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी करदिया मुख्यमंत्री ने सारे विभागों को नेड़े तालमेल कर हिस्सा लैन वाली टीम अधिकारियों दर्शकों विश्व पद्धरी सहूलत प्रदान करने कोई कसर बाकी न छड़न के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत, चीन, मलेशिया, जापान, बंगलादेश और दक्षिणी कोरिया समेत प्रमुख हाकी मुल्कों की भागीदारी पंजाब में कौमांतरी खेड केंद्र च रखेगी और अपनी मेहमान नवाजी, बुनियादी ढांचा, खेड उत्तमता और जीवंत सभ्याचारक रिवायतों दिखाने का मौका देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टूरनामेंट का उद्घाटनी समारोह 27 अक्तूबर को जलंधर च होगा, जिसके मैच 5 नवंबर तक होंगे। उन्होंने नगर निगम जलंधर को यह यकीनी बनाने लिए कहा कि शहर अंतरराष्ट्रीय सैलानियों लिए एक स्वच्छ, स्वागत योग ते आकर्षक दिख पेश करे। श्री गौरव यादव ने अज पंजाब के पुलिस महानिदेशक वजों अहदा संभाल लिया। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस सूबे च शांति ते सद्भावना बनाई रखने च वचनबद्ध है। नशीले पदार्थों की तस्करी ते संगठित अपराध खिलाफ लड़ाई नूं तेज करन, बुनियादी पुलिसिंग नूं मजबूत करना ते पुलिस बल दा आधुनिकीकरण ते अपग्रेड करना पुलिस दीआं मुख तरजीहां ने। उन्हां कहा कि पंजाब पुलिस वल्लों शांति, सद्भावना ते इक सुरक्षित सूबे नूं उत्साहित करन लई नागरिकां दे सरगर्म समर्थन सहयोग की मांग की थी। डीजीपी ने चेतावनी दी कि सारे गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार करके कानून के कटहरे च लिआंदा जाएगा।
1: पंजाब दे विच एंटी नैशनल एलीमेंट्स नूं सिर नहीं चुकन दिता जाएगा। पंजाब दे विच गैंगस्टर्स अते एंटी सोशल एलीमेंट्स लई कोई थां नहीं है। ये गैंगस्टर्स जिथे भी लुकनगे, मैं वार्निंग दिंदा हां, उहनां नूं पंजाब पुलिस अरेस्ट करके लॉ दे सामने पेश करूगी। गैंगस्टर्स उहनां दे नैटवर्क दे खिलाफ ऑपरेशन इंटेंसीफाई किए जाएंगे। हाल ही दे विच माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लैवल रिव्यू मीटिंग करके युद्ध नशियां विरुद्ध अभियान नूं होर तेज करन दे डायरेक्शंस दिते हैगे। सो पंजाब पुलिस लोकां दे नाल मिल के असीं युद्ध नशियां विरुद्ध नूं इस दे मुकाम तक लैके जावांगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नूं खत्म करना, ड्रग नैटवर्क्स नूं डिसमेंटल करना अते पंजाब नूं सुरक्षित, शांतिपूर्ण अते नशा मुक्त बनाने लई पंजाब पुलिस दा संकल्प अटल है।
0: डीजीपी ने दसिया कि उन्होंने अज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह नाल मुलाकात भी की थी और उन्होंने सूबे की अंदरूनी सुरक्षा स्थिति और कानून व्यवस्था बारे जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मीटिंग च सूबे के मुख्य सकत्र भी मौजूद रहे। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनतक सेवा च 25 साल पूरे कर ले ने। यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा दे मंत्र राही परिभाषित है ते कणथक वचनबद्धता है जो जारी है। सेवा ते सुशासन लई इस दृष्टिकोण तो सेध लैंदे होए सरकार 2047 तक एक विकसित भारत दे टीचे नूं प्राप्त करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इस समर्पण जीवन नूं बदल रहा है। अज साडी विशेष लड़ी च असीं तुहाडे लई एक मिसाल लैके आए हां कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं नीम कोटड यूरिया 2015 राही अमल च लिआंदा गया। होर वेरवे नाल इक रिपोर्ट।
2: किसानां नूं सस्ते भाव ते मिलण वाला यूरिया खेती दी बजाए उद्योगां विच वरत्या जा रहा सी। इस तरह सरकार वल्लों दित्ती जांदी सबसिडी दा फायदा किसानां दी बजाए दूजे लोक चुक रहे सन अते किसानां नूं खाद दी घाट दा सामना करना पैंदा सी। सितंबर 2015 विच सरकार ने भारत विच बनण वाले सारे यूरिया ते निम दी परत चढ़ाउणी लाजमी कर दित्ती। दिसंबर 2015 विच इह नियम दरामद कीते जाण वाले यूरिया ते वी लागू कर दित्ता गया। निम दी परत चढ़ाउण नाल यूरिया दी उद्योगां विच गलत वरतों कर मुश्किल हो गई। इस नाल एक होर फायदा भी होया, निम दी परत कारण नाइट्रोजन हौली हौली निकलन लगा ते बूटियां ने इस नूं वधेरे चंगी तरह सोखना शुरू कर दिता। इस दे नाल ही झोने दी पैदावार विच 5.79%, मक्की विच 7.14%, सोयाबीन विच 7.4%, अरहर विच 16.8% अते गन्ने दी पैदावार विच 17.5% दा वाधा दर्ज कीता गया। यूरिया दी गलत वरतों होनी बहुत घट हो गई अते करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अंदाजा लाया गया। इस तरह निम की एक परत ने दहाकियां तो चल रही गड़बड़ी नूं रोकण विच मदद कीती। जलंधर तो आकाशवाणी खबरां लई मैं काजल।
0: टीबी मुक्त भारत मुहिम तहत जलंधर के जिला पद्धरी समागम दौरान टीबी नूं खत्म करने लई उन्हां दे शलाघायोग कार्ज वास्ते कल 91 पंचायतां नूं सन्मानित किया गया। डिप्टी कमिश्नर

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
3: ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
2: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा

लिखी जाती है तो उसकी न्यू में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के

0: एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है, खासकर पीएम गतिशक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है।
1: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 हम आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, सभी वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी के सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज लाने के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
0: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े ही बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
2: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, तो उल्लेखनीय वृद्धि है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, अभी 2025-26

0: में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह करीब परसेंटेज में देखें तो 61% बढ़ोतरी है। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उससे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेट द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो जी। पराशर जी भूल रहे थे। देखिए, पहले दिल्ली से, मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल का, दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में आप पहुंचा देने। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्वल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं देता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरे नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम

0: हमारा ये पाई इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि लोगों के जीवन की जो स्तर में उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा आज महाराष्ट्र में गुजरात में तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बनाते उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना, और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा जो जुड़ रहा है बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है वो हम विदेशों से, पहले तो इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल कंफर्टेबल स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तकरीबन 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, ये सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही ये सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पावर और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितनी लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सह

0: जी झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता यह है कि यह भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को यह पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है। लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, यहाँ पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और केवल धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से करके 174 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
2: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
2: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी,
2: मतलब इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने। लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा

0: थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
1: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनके लिए और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी एनसीआर क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में यानी इसी वर्ष नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पिंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
2: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 कि कहीं से कहीं पहुंचना, तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं।
0: जी,
2: उसे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है।
0: जी,
2: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे।
0: जी,
2: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
0: जी,
2: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का और हमारी उसमें हम ये सब सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-3000 किलोमीटर जाना पड़ता था, उसका समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे।
0: जी,
2: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, सारी की सारी फैसिलिटीज है, ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से

0: कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं। तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पे
1: जी।
0: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
2: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
1: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सके अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
2: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है कि ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमिकल लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर

0: इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सार हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा के इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। हुण तुसी साडे दिल्ली केंद्र राही सुन रहे सी विशेष प्रोग्राम जन सेवा से देश सेवा।
4: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकियां विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने आप नू किसी सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इंक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसी तो भी इंक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा ले सकता है ते उस नू गलत तरीके नाल उपयोग कर सकता है। कोई भी सरकारी अदारा किसी तरह दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लो। सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
3: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां सब रंग दे तहत डॉक्टर सालिक जमील बराड़ दा अफसाना, मेरा नया अफसाना।
5: अफसाने का उन्वान है अर्श से फर्श तक। गुलाम मोहम्मद उर्फ गामे की चाय और दूध की दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। उमूमन सुबह को फजर की नमाज के बाद वो दुकान खोल लेता था। थोड़ी देर बाद शहर के दूर दराज के इलाकों और देहातों से गवाले दूध लेकर आना शुरू हो जाते थे और दूध से कई ड्रम भर जाते थे। फिर देखते ही देखते दूध लेने वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती और एक घंटे में कई क्विंटल दूध फुर हो जाता। इलाके में आम बात मशहूर थी कि गामे के हाथ से एक नंबर खालिस दूध मिलता है। फिर सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक दूध, दही, लस्सी और चाय पकती रहती और दुकान के अंदर और बाहर पड़े लकड़ी के बेंचों पर बैठे अफराद टीवी देखते हुए चाय की चुस्कियों से लुत्फानंदोज होते रहते। इसके अलावा दो तीन छोटे छोटे लड़के लोहे के छीकों में कांच के गिलास डालकर पूरे बाजार की दुकानों पर चाय सप्लाई करते रहते। गामा सफ़ेद कमीज और डब्बीदार, कभी लाल, कभी नीले और कभी हरे रंग की धोतियां पहनने काम में मगन रहता। गामे के यहाँ रुपए पैसे की खूब रेल पेल थी। उसने पुराना घर गिराकर नया आलीशान घर बना लिया था। घर में हर ज़रूरत की चीज़ दस्तयाब थी। उसकी बीवी रज़िया के पास 30-40 तोले सोना और कई किलो चांदी थी। इस सब के बावजूद उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी कमी थी। उसके हाँ बेटा नहीं था, अलबत्ता चार बेटियाँ थीं। गामे की बीवी रज़िया ज़िंदगी की इस कमी को शिद्दत से महसूस करती थी, जबकि ये कमी गामे को भी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। गामे की बीवी ने बेटा पाने की खातिर पीरों, फ़कीरों, बाबाओं और दरगाहों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। हालांकि

गामा पांच वक्त का पक्का नमाजी था और शिर्क से कोसों दूर रहता था, लेकिन बेटे की चाहत के आगे वो भी बेबस था और अपनी बीवी के अमाल पर खामोश था। कई साल बाद रज़िया उम्मीद से थी। सदका खैरात और कुरान खुवाने के साथ साथ दुआओं का दौर मसलसल जारी था। हर हफ्ते घर में कुरान खुवानी होती और गरीब गुरबा में खाना तकसीम किया जाता था। आखिरकार बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। रज़िया को शहर के महंगे प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले जाया गया। इस बार खुदा ने रज़िया और गामे की सुन ली और उन्हें एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उसे फौरन किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। गामे ने वक्त ज़ाया किए बगैर लुधियाने के जदीद तीन अस्पताल CMC का रुख किया। गालबन दो हफ्तों तक बच्चा वहाँ एडमिट रहने के बाद सेहतयाब हो गया। इस दौरान बच्चे के इलाज पर गामे के लाखों रुपए खर्च हुए और उसका कई तोले सोना बिक गया। 15 दिन की भाग दौड़, टेंशन और बेआरामी की वजह से गामे को काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी। हालांकि उसने अपने फैमिली डॉक्टर अकरम से दवा ली थी, लेकिन फिर भी जिस्म गिरा गिरा सा था। गामा दुकान पर बैठा ऊँगता रहता था। दूसरी तरफ घर में बेटे की पैदाइश पर जश्न जारी था। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में मिठाई बांटी गई थी। रेजगारी के अलावा 10, 20, 50 और 100-100 के नोट लुटाए जा रहे थे। गामे की बहनों ने सेहरा बांधा तो उन्हें सोने की अंगूठियां डाली गईं। इसी बीच गामे की दुकान पर एक अमली टोला बैठने लगा। बहुत से शरीफ लोगों ने इस मुतल्लिक गामे से शिकायत की, लेकिन गामा ठहरा बिजनेसमैन। ये अमली टोला दिन में हजार हजार रुपए तक की चाय पी जाता था। अब बताओ, उनको बिठाने में गामे को नुकसान था या फायदा? उसने किसी की एक ना सुनी और ये अमली ग्रुप उसकी दुकान पर लगातार बैठने लगा। कुछ शरीफ लोगों ने एहतजाजन उसकी दुकान पर आना छोड़ दिया, लेकिन गामे को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी उसे 2-4 ग्राहकों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उस दिन भी गामे की तबीयत ठीक नहीं थी। दवाई लेने के बावजूद उसका जिस्म थका थका सा था। वो दुकान पर बैठा बैठा ऊँग रहा था। फिड्डू उस्ताद नामी अमली गामे की हरकत को बगौर देख रहा था। आखिरकार उठा और भट्टी के आगे बैठे गामे से मुखातिब हुआ। क्या हुआ गामा जी? मैं कई दिन से देख रहा हूँ जनाब की तबीयत ठीक नहीं। गामे ने गर्दन पीछे घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ फिड्डू उस्ताद, कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि लगातार दवाई भी ले रहा हूँ। मेरे पास ऐसी जादुई दवा है कि मंदा एकदम हवा में उड़ने लगता है। फिड्डू उस्ताद पीले पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। गामा इस बेबसी से छुटकारा चाहता था। उसने जवाब दिया, लाओ तुम्हारी जादुई दवा दो। फिड्डू उस्ताद ने अपनी मैली कुचैली लोअर में से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और लिफाफे की गांठ खोलते हुए गामे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें से गोली जितनी अफीम ले लो। फिड्डू छोटे कद और सांवले रंगत का आवारा गर्द नशेड़ी था। फिड्डू उस्ताद का असल नाम क्या था ये तो किसी को मालूम नहीं था, और उस्ताद उसका तकिया कलाम था। इसी वजह से लोगों ने उसका नाम ही फिड्डू उस्ताद रख दिया था। वो शरीफ लोगों के लिए बेकार और बदमाश और नशेड़ी लोगों के लिए किसी रहमत से कम नहीं था। उसे शहर में होने वाले हर छोटे बड़े वाकयात की खबर रहती थी। आपको नशा चाहिए, वो आपको मिनटों में दिलवा देता था। कुछ लोगों के मुताबिक वो पुलिस का मुखबर या टॉट है। गामे ने अफीम के बारे में सुन रखा था कि यह आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है वगैरह वगैरह, इसलिए उसने बगैर कोई सवाल किए फिड्डू उस्ताद के हाथ से लिफाफा पकड़ा और उसमें से चुटकी भर अफीम निकाली और जीप पर रख ली और पानी का गिलास हल्क में उंडेल लिया और लिफाफा फिड्डू को वापस कर दिया। चंद ही घंटों में गामे की थकावट दूर होने लगी और वो एकदम चुस्त हो गया। बस फिर क्या था, गामा आहिस्ता आहिस्ता अफीम का आदि हो गया। पहले पहले वो फिड्डू उस्ताद से मुफ्त अफीम खाता रहा, लेकिन बाद में उसने खुद अफीम खरीदनी शुरू कर दी। वो सारा दिन नशे में धुत दुकान में पड़ा रहता। नौकर अच्छी चाय नहीं बनाते थे और ना ही वक्त पर दुकानों पर चाय सप्लाई होती थी। इस वजह से बहुत से दुकानदारों ने गामे के हाथ से चाय मंगवानी बंद कर दी थी। इसके अलावा गामे के अफीम खाने के मतलब बहुत से अफराद को इलम हो गया था, जिसकी वजह से शरीफ लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया था। चोरी छुपे बिकने वाला ये नशा बहुत महंगा होता है, इसकी कोई कीमत नहीं।

0: आपकी तलब पूरी हो जाए यही बड़ी बात है। एक किलो की कीमत हजारों रुपए होती है। बस फिर क्या था, अफीम की लत ने गामे का दूध और चाय का कारोबार ठप कर दिया। दुकान की कमाई कम हो गई। वक्त पर नौकरों को नौकरी ना मिलने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ग्वालों को रुपए ना मिलने पर उन्होंने दूध डालना बंद कर दिया। नतीजे के तौर पर गामे के यहाँ सुबह शाम बिकने वाला दूध आना बंद हो गया। गामा दुकान के घाटे को पूरा करने के लिए बार बार बीबी का जेवर बेचता रहा। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा सोना चांदी बिक गया। दुकान को चलाने के लिए उसने दोस्तों रिश्तेदारों ने उसकी कई बार मदद की, लेकिन वो दोबारा कामयाब ना हो सका। कई बार उसको नशा छोड़ सेंटर भी भेजा गया और जमात के साथ भी, लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद वो अपने मामूल की ज़िंदगी पर वापस आ जाता था। आखिरकार दोस्तों, मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रज़िया ने बच्चों का पेट भरने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। कभी कभार रज़िया जब कुछ ज़्यादा रुपए कमा लेती तो कुछ रुपए गामे को भी दे देती, ताकि वो नशा करने के लिए नशा ना बेचे, चोरी ना करे और पुलिस के बेरहम मार से बचा रहे। वो रज़िया के हाथ से नोट पकड़ते हुए रोने लग जाता कि काश वो बुरी सोहबत से दूर रहता तो आज उसकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद ना होती। काश वो अपने बुज़ुर्गों की बात मानता। वो अपने मन्नतों और दुआओं के सदके पैदा हुए बेटे को दूध के लिए तरसता हुआ देखता तो बिलबिला उठता। फिर वो कई दिन तक नशे से दूर रहता और मजदूरी करके अपने बेटे की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन नशा उसका पीछा ना छोड़ता। अलगर्ज के वो चाह कर भी नशा नहीं छोड़ पा रहा था। नतीजे के तौर पर चंद ही सालों में गामे की 20 साल की खून पसीने की कमाई और इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो मुकम्मल तौर पर नशेड़ी बन चुका था। उसकी 18 घंटे चलने वाली दुकान बंद हो गई थी। उसने अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया था। अब वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए नशा बेचता था। कई बार पकड़ा गया था और जेल की हवा खा चुका था। उस पर कई मुकदमे चल रहे थे। नशे की तलब को पूरा करने के लिए उसने चोरियां भी करनी शुरू कर दी थी। वो शहर में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मारा मारा फिरता था। कई बार तो वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए सर पर पड़ी प्लास्टिक की बोतलें और गत्ते के डब्बे इकट्ठे करता हुआ नजर आता। गर्ज के वो अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए हर काम कर गुजरता था। पूरे इलाके के लोगों के लिए वो इबरत बन चुका था। कोई उसे हकारत की नज़र से देखता तो कोई उसकी ज़िंदगी पर अफसोस करता। वो एक सर्द रात थी। नशे की तलब ने गामे को बेहाल कर दिया था, लेकिन नशे के लिए उसके पास एक फूडी कोड़ी तक ना थी। आखिरकार वो निडाल होकर चारपाई पर ढेर हो गया और छत को घूरने लगा। उसे हर हाल में नशा चाहिए था। उसका अंग अंग टूट रहा था। उसकी जबान सूखने लगी थी। खून की गर्दिश तेज हो गई थी। दिमाग फटा जा रहा था। अचानक गामे के लबों पर फातिहाना लहर दौड़ आई और वो एकदम उठा, घर से बाहर निकल गया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह के 11 बजे तक वो नशे में धुत सोता रहा कि उसकी बीवी रज़िया बाहर से चीखती चिल्लाती हुई आई और उसने दोनों हाथ हवा में लहराकर उसकी पीठ पर जमा दिए। गामा हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या तेरा बाप मर गया, सारा नशा उतार दिया। वो रज़िया पर बुरी तरह बरस पड़ा। अपना अब्दुल रहमान गटर में गिर गया है, रज़िया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। गामे के सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई, क्योंकि रात उसने ही अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए मोहल्ले के मेन गटर का ढक्कन चुरा कर कबाड़ी को बेच दिया था।
1: हुणे तुसीं डॉक्टर सालिक जमील बराड़ दा लिखिया अफसाना सुन रहे सी, मेरा नया अफसाना। असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहूं सुनदे हां जगजीत सिंह दी आवाज़ विच एक गज़ल।

0: कश्मीर तक कीती गई। सुप्रीम कोर्ट ने दसंबर 2023 दे अपने फैसले विच भी दर्ज किया कि संविधानक हुक्मां राही भारतीय संविधान की पूरी लागूता हुई अते धारा 370 नूं प्रभावहीन किया गया। इस नाल केंद्र सरकार के अनुसार कई समाजिक अते आर्थिक अधिकारां की पहुंच वधी। सरकारी जानकारी अनुसार वाल्मीकि दलित अते गोरखा भाईचारिया नाल संबंधित लोगों नूं भी कानूनी अधिकारां दे मामलां विच समानता वल वधण दा मौका मिलिया। सरकार ने बाल विआह रोकथाम, सिक्ख्या दे अधिकार अते होर कानूनां दी लागूता नूं भी इस बदलाव दे नाल जोड़िया है। इस दे नाल महिलावां दे अधिकार, समाजिक न्याय, अनुसूचित जातियां अते कबायली भाईचारिया नाल संबंधित कानूनी प्रबंधां नूं भी नवीं संविधानिक व्यवस्था विच लागू कीता गया। एक राष्ट्र एक संविधान दा जमीनी बदला पहला जम्मू कश्मीर विच 890 केंद्री कानून लागू नहीं सन, अज सारी लागू हन। 250 भेदभाव वाले कानून खत्म किए गए, 137 सोधे गए, हुण उत्थे भी SC ST नूं राखवांकरण RTI RTE दा अधिकार मिल गया है। विकास अते बुनियादी ढांचा, जम्मू कश्मीर विच सड़कां, पुलां, बिजली, रेल, सेहत ते सिक्ख्या दे खेतरां विच विकास नूं 2019 तों बाद सरकारी नीति दा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। सरकार ने पहलां तों चल रहे प्रधानमंत्री विकास पैकेज अते होर प्रोजेक्टां नूं अग्गे वधाया। भारत दे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
1: मैं संविधान के प्रकाश में ही मेरी बातों को रखना चाहता और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है उसने हमारी निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती के देने का निरंतर हम प्रयास करते थे। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी जो कि हमारी संविधान की भावना थी और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया। देश की एकता हमारी प्राथमिकता है।
0: निवेश अते उद्योग, धारा 370 दे बदलाव तो बाद केंद्र अते जम्मू कश्मीर प्रशासन वालों निवेश नूं उत्साहित करन लई कई नीतियां लियांदियां गईयां। 2021 विच जम्मू कश्मीर लई नवीं सेंट्रल सैक्टर स्कीम विच इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट लागू कीती गई। इस दे नाल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 तो 30, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डिवेलपमेंट पॉलिसी अते सिंगल विंडो रूल्स वर्गे कदम भी लए गए। सरकारी अंकड़े अनुसार उद्योगिक खेत्र विच दर्ज निवेश 2019-20 विच लगभग 296.64 करोड़ रुपए सी, जो 2022-23 विच 2153.45 करोड़ अते 2023-24 विच 2417.19 करोड़ रुपए दर्ज कीता गया। इना अंकड़िया तो निवेश विच वाधा दिखाई दिंदा है। जम्मू कश्मीर दी आर्थिकता विच सैर सपाटे दा बहुत वड्डा स्थान है। कश्मीर दियां वादियां, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग अते जम्मू दे धार्मिक स्थान देश विदेश दे सैलानियां नूं आकर्षित करदे हन। जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग दे अंकड़े अनुसार 2023 विच कुल सैलानी आमद विच महत्वपूर्ण वाधा दर्ज होया। केंद्रीय सैर सपाटा मंत्रालय वालों दिते अंकड़े अनुसार 2024 विच जम्मू कश्मीर विच घरेलू सैलानियां दी गिनती 2.35 करोड़ तो वध रही, जबकि विदेशी सैलानियों की गिनती 65,452 दर्ज की गई। सैर सपाटे विच वाधे दा सीधा लाभ सिर्फ होटलां नूं नहीं हुंदा। टैक्सी चालक, रेस्टोरेंट, हस्तशिल्प कारीगर, टूर गाइड, फल विक्रेता, स्थानक दुकानदार अते होर छोटे कारोबार भी इस नाल जुड़े हुंदे ने। इसलिए जिस सैलानियां दी आमद वधदी है तां स्थानक पद्धर ते रोजगार दे मौके भी वध सकदे ने। खेतीबाड़ी अते बागबानी, जम्मू कश्मीर दी अर्थव्यवस्था विच सेब, केसर, अखरोट, बादाम अते होर बागबानी उत्पादन दी विशेष महत्ता है। केंद्र सरकार वल्लों 2019-20 विच दित्ती जानकारी अनुसार कश्मीर तों वड्डी मात्रा विच सेब देश दे होर हिस्सिआं तक भेजे गए अते NAFED राही सीधी खरीद दी व्यवस्था भी कीती गई सी। बाद दे सालां विच खेतीबाड़ी अते बागवानी लई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट प्लान वर्गे उपरालिआं नूं भी अगे वधाया गया। किसानां लई चुनौतियां फिर भी मौजूद हन। मंडी तक पहुंच, कोल्ड स्टोरेज, आवाजाई, मौसमी तब्दीली वर्गे मुद्दे अजे भी

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 8:45 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਨਿਊਜ਼ ਐਟ ਨਾਈਟ ਤੇ 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ

0: और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर

0: सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
1: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
2: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
3: सेमीकंडक्टर जर्नी,
4: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
3: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु

0: खुश आमदीद शकीला बानो, खुश आमदीद।
1: जय हिंद बंधु।
0: जय हिंद, जय हिंद।
1: सोमनाथ भाई, बूढ़े हो गए हो।
0: पोते पोतियां वाला हूँ, बूढ़ा तो होगा ही ना। ये ना मिलवाता हूँ तुम्हें, ये मेरा छोटा बेटा है भारतेंदु।
2: नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, जीते रहो।
0: और ये छोटी बहू है आस्था।
3: पायलागु आंटी।
1: जीती रहो बेटी। बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर अपनी आजादी की लड़ाई पर गर्व तो होता होगा, है ना?
0: ये शुभेंदु है भारतेंदु का बेटा।
4: नमस्ते नानी।
1: नमस्ते बेटा। नमस्ते।
0: और ये सुलेखा है सतीश की बेटी।
1: सतीश की बेटी। नमस्ते बेटा। आओ आओ बच्चों, अल्लाह तुम्हें भारत का सच्चा नागरिक बनाए। भाई सोमनाथ, बस दोनों की सवालाख संतान।
0: भारतेंदु की एक छोटी बेटी है रंजू, और सतीश का एक छोटा बेटा है संजू।
1: हाँ, वो नटखट कहाँ है, जरूर नानी माँ से छेड़छाड़ की योजना बना रहे होंगे।
0: अभी तो ना वो स्कूल वालों के साथ भारत दर्शन पर गया है।
1: अच्छा,
0: आएंगे तो सचमुच ही तुम्हारी नाक में दम कर देंगे।
1: आने दीजिए, नाक में दम करने के लिए मैं भी किसी से कम नहीं। भारत दर्शन पर ऐसे सवाल पूछूंगी कि सचमुच नाक में दम आ जाएगा।
0: शकीला बानू, ये ना आपका कमरा है। यहाँ अपनी समझ के मुताबिक आपकी जरूरत की हर चीज मुहैया कर दी गई है। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो संकोच नहीं करना।
1: लेकिन सोमनाथ भाई।
0: हाँ हाँ।
1: ये खिड़की बंद क्यों रखी है, देखो तो सही। समझी, चारों ओर फैले प्रदूषण के कारण।
2: प्रदूषण कहाँ नहीं है, राजनीति में प्रदूषण है, प्रशासन में प्रदूषण है, व्यापार में प्रदूषण।

0: प्रदूषण है, रिश्तों में प्रदूषण है, कहां नहीं है, धर्म में प्रदूषण है. यू जस्ट नेम एनी फील्ड एंड यू विल फाइंड पॉल्यूशन.
1: अरे वाह भारतेंदु, तुम्हें तो दूर दूर तक प्रदूषण दिखाई देता है, लेकिन अपना यानी अपने आसपास का प्रदूषण क्यों नहीं दिखाई देता? होता है, कईयों की नजदीक की नजर काफी कमजोर होती है.
2: छोड़ो शकीला जी, बच्चे हैं, यूं ही भुनभुनाते रहते हैं.
3: नानी माँ, मैं आपको नानी माँ तो कह सकती हूँ ना?
1: क्यों नहीं,
3: अगर आप पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चली जाती तो कम से कम अपनों के बीच में तो रहती.
4: अरे अब भी तो नानी अपनों के बीच में ही है, हम क्या इनके अपने नहीं
3: है? ओ, वो तो है, पर पाकिस्तान ना जाने की कोई वजह तो रही होगी.
1: वजह थी बेटी, वजह थी मेरा विश्वास, मेरी भावनाएं जो भारत की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी. भारत को आजादी तो मिल गई, पर वो लहू लुहान आजादी थी. स्वार्थी लोगों ने मजहब और धर्म के नाम पर ऐसी आग लगाई कि इंसानियत धूं धूं करके जलने लगी. दोस्ती, मोहब्बत, मासूमियत तलवारों की नोक पर उछाले जाने लगे. हथियारों की हुंकार में वंदे मातरम का स्वर टूट गया.
5: सकीना बेगम, हम ज्यादा देर तक यहाँ महफूज नहीं रह सकते. कल पठान फौजियों की निगरानी में 2-3 ट्रक लाहौर जा रहे हैं, हमें उनके साथ निकल जाना चाहिए.
6: लेकिन शकीला को कैसे समझाएं?
1: अबू, क्या हमारा जाना रुक नहीं सकता? क्या कोई ऐसी सूरत नहीं निकल सकती कि हम यहाँ अपनी धरती पर बने रहे?
5: बेटी, हालात तुम्हारे सामने हैं. जिस नफरत की बुनियाद पर वतन की तकसीम हुई है, वो नफरत कैसे मिटेगी?
1: मिट जाएगी अबू, ये खून खराबा वक्ती है, कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. वही पहले जैसा माहौल, पहले जैसा भाईचारा. भारत सरकार ने सेक्युलरिज्म का ऐलान जो किया है ना?
5: ये तुम्हारी खुशफहमी है बेटे, कौन जाने आगे क्या होने वाला है. लोगों के काफिले जा रहे हैं, आ रहे हैं. तकसीम ने दिलों पर जो जख्म लगाए हैं वो कैसे भरेंगे? अगर हमारे जैसे कुछ लोग यहाँ रह भी जाएंगे तो उनकी क्या हैसियत होगी?
1: वही जो एक हिंदुस्तानी की होगी अबू, वहाँ जाकर हमारी क्या हैसियत होगी? एक रिफ्यूजी की, एक मुहाजर की, घर से बेघर होने की अजियत हम कैसे बर्दाश्त करेंगे अबू?
5: बेटे, वो हमारा मुल्क होगा, वहाँ हमारे कुछ हकूक होंगे, हमारे कुछ अधिकार होंगे, हमारे कई रिश्तेदार होंगे. तुम्हारे भाई ने वहाँ एक मकान का इंतजाम भी कर लिया है. अपनों के बीच में हमें जो सुकून मिलता है बेटे, वो शायद हमें यहाँ ना मिले. हिंदुस्तान के साथ मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझता हूँ बेटे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है. चलो बेटे, चलने की तैयारी करो.
6: शकीला, कहाँ गई थी तू? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे, और ये किसे पकड़ के ले आई हो?
1: ये पंडित मूलराज की बेटी आशी है. इसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया है, इसका मकान जला दिया गया है, और ये दीवार के साथ सहमी सी खड़ी थी.
6: देख लिया ना मौत का नंगा नाच तूने? तुम्हें भी कोई चीड़ फाड़ कर कौओं या गिद्धों के आगे डाल देगा. निकाल इस छोकरी को यहाँ से, इसी की वजह से हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएंगे.
1: इस मासूम को जलती हुई आग में कैसे फेंक दूं?
5: अच्छा अच्छा, रहने दो, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं.
6: क्या कह रहे हो, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं?
5: अब इस यतीम को अकेला कहाँ छोड़ेंगे? जब तक छोटी रहेगी घर का कामकाज करेगी बेगम, और जब बड़ी होगी तो किसी माकूल जगह निकाह कर देंगे.
1: पाकिस्तान ले जाने के ख्याल से मेरी रूह कांप उठी, और मौका पाते ही मैं उस बच्ची को साथ लेकर निकल गई. शकीला से शीला बन गई. जलते मकानों और जलती लाशों से बचते बचाते मैं एक रिफ्यूजी कैंप में जा पहुंची. शकीला से शीला बनना मुझे कबूल नहीं था, मेरी आत्मा इसे कबूल नहीं कर रही थी. मैं जानती थी कि वो

0: फिरका तराना बवंडर कुछ खुदगर्ज सियासी लोगों का उठाया हुआ था, जो वक्ती था, क्योंकि वो हिंदुस्तान की आत्मा के विरुद्ध था। परंतु मैं डरी हुई थी कहीं मुझे कोई पहचान न ले, इसलिए मैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में फिर से शकीला बनकर रहने लगी।
1: और वो बच्ची?
0: वो आशी, उसकी अपनी घर गृहस्थी है, वो जर्नलिस्ट है, और उसका पति विक्रम सिंह कार्टूनिस्ट है।
1: आपकी बेटी आशी आपकी खबरें खूब लगाती होगी।
0: वो खबर लगाती नहीं, खबर लेती है, बड़ी तेज जर्नलिस्ट है।
2: वैसे भी अब इनकी खबरें क्या लगती होंगी, आजादी मिलने के बाद अब कुछ करने को तो रहा नहीं।
1: अरे वाह, रहा क्यों नहीं, सभाएं होती हैं, विकास कार्यों पर बातें होती हैं, प्रॉमिस और संकल्प होते हैं, समारोह और उत्सव होते हैं, उद्घाटन होते हैं। हमारे बाऊजी को इनवाइट किया जाता है कि नहीं?
3: जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान और त्याग किया हो, अंग्रेजों की लाठियां और गोलियां खाई हो, वे हमेशा खबरों में रहते हैं।
2: आपका युग था बड़ा कमाल का नानी अम्मा, काश हम भी आपके युग में पैदा हुए होते, आजादी की लड़ाई में जान देते तो शहीद कहलाते, जिंदा रहते तो फ्रीडम फाइटर बनकर आराम की जिंदगी गुजारते।
0: आजादी की लड़ाई खत्म तो नहीं हुई, ये तो अब भी जारी है, ये लड़ाई तो बार बार लड़नी होती है।
3: अब किससे देश को आजाद कराना है?
4: लो बड़ी भी, समझाइए बड़े भैया को, देश को भ्रष्टाचार से आजाद कराना है, सामाजिक अन्याय से आजाद कराना है, गरीबी से आजाद कराना है, फिरका प्रस्ती और अलगाववादी ताकतों से आजाद कराना है, यही तो कहते हैं हमारे नेता।
0: तुम्हारा तन सर आंखों पर, लेकिन नेता ठीक कहते हैं।
4: वाह, सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति कहता है देश को भ्रष्टाचार से बचाओ।
0: ठीक कहता है वो, आपको चुनौती देता है कि मैं भ्रष्ट हूं, दोगला हूं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता हूं, मुझे कुर्सी से उतार दो, ले आओ ऐसे व्यक्ति को जिसमें आत्मनिष्ठा हो, जो देश से सच्चा प्यार करता हो, जो देश को भ्रष्टाचार के दैत्य से आजाद करा सकता हो।
4: तो ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी?
0: जैसे महात्मा गांधी की पहचान हुई थी, लाल बाल पाल की पहचान हुई थी, अब्दुल कलाम आजाद की पहचान हुई थी, जय हिंद का नारा गुंजाने वाले नेताजी सुभाष की पहचान हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और तत् की पहचान हुई थी, कितनों के नाम गिनाऊं? आजादी की लड़ाई तो अब भी जारी है। बोलो शुभेंदु, इन महान नेताओं में कौन सा बनने की हिम्मत है तुम्हें?
1: बोलो भैया, अब बोलते क्यों नहीं?
5: पर एक बात है, भ्रष्टाचार के इस दैत्य की पहचान भी तो हो। आंटी, इसमें हंसने की क्या बात है भला?
0: अभी अभी भारतेंदु को दूर दूर तक प्रदूषण दिखाई दे रहा था, अब उसकी पत्नी को भ्रष्टाचार के दैत्य की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यानी भ्रष्टाचार दिखाई देता है और भ्रष्टाचारी की पहचान नहीं होती। वाह भाई वाह, सच्चाई से आंख मूंदने, समस्या से दूर भागने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? देखो, लेकिन पहचानने से साफ इनकार कर दो।
3: आपको तो आजादी की लड़ाई का एक्सपीरियंस है, आप हमारा नेतृत्व क्यों नहीं करती?
0: अपने बाबूजी से कभी ये सवाल किया है आपने?
6: शकीला जी, हम नेता नहीं थे ना, हम सब फॉलोअर थे।
3: भाई, हम भी फॉलोअर बनने को तैयार हैं, पर कोई नेता तो हो।
0: काका, नेता आसमान से नहीं उतरेगा, इंसान खुद अपना नेता होता है, उसी की आत्मा, उसी का जमीर उसका नेतृत्व करता है। कभी वैसा करने की कोशिश की जैसा आपकी आत्मा कहती है? हम भ्रष्टाचार की दुहाई भी देते हैं और भ्रष्टाचारी के तलवे भी चाटते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे उठाकर शासन की कुर्सी पर बिठा देते हैं, यही हम सबकी ट्रेजेडी है।
4: माँ, मैं आपको माँ कह सकता हूँ?
0: क्यों नहीं कह सकते, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ। आओ भारतेंदु, बैठो।
4: अम्मा, कितना सूद काट लेती हो?
0: जितना कट जाए।

0: कुछ कहना चाहते हो? तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो बेटा।
1: अम्मा, मेरे पास एक खबर है, बल्कि एक पूरी कहानी। आप आशी से कहकर अखबार में छपवा देंगी?
0: छपने योग्य होगी तो जरूर छपेगी। हाँ, लेकिन खबर ऑथेंटिक होनी चाहिए। बहुत सी कहानियां मनगढ़ंत होती हैं, महज दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए।
1: जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, फैक्ट्स पर आधारित है।
0: कहो।
1: ये हमारे घर के बाहर जो जमीन का टुकड़ा है ना, जहां से गंदगी और कचरे की बू आती है, ये सरदार खड़क सिंह का है।
0: कौन खड़क सिंह? वो जो सोमनाथ के साथ क्रांति दल में थे।
1: हाँ हाँ हाँ, वही। स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने ये जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इसलिए दी थी कि यहाँ एक पार्क कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए पार्क हो, खेलने के लिए मैदान हो, फूलों के पार्क हो। आधी जमीन पर अलग अलग किस्म के पेड़ लगाकर उसे मिनी जंगल का रूप दिया जाए।
0: तो ये सब बना क्यों नहीं?
1: यही खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। लैंड ट्रांसफर का एग्रीमेंट 5 साल पहले हुआ था। तब खड़क सिंह अंकल ने यह जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दी थी। उसके बाद बड़ी तेजी से उस पर काम शुरू हुआ, उसका प्लान भी तैयार हो गया था।
0: फिर क्या हुआ? पार्क कॉम्प्लेक्स बनने का काम शुरू क्यों नहीं हुआ?
1: इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर सक्सेना की अचानक मौत हो गई। राणा कुंवर सिंह नए चेयरमैन बन गए। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की नई रचना हुई, नए मेंबर बने, और पार्क कॉम्प्लेक्स बनने की योजना खटाई में पड़ गई। अब यहाँ कोठियां बनेंगी और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा।
0: ये कैसे हुआ? तुमने उनको बताया नहीं कि यहाँ पार्क कॉम्प्लेक्स बनना है?
1: बताया था। सर, आपने मुझे बुलाया है?
2: आओ भारतेंदु साहब, इनसे मिलो। ये सरदूल सिंह है, हमारी खास आदमी।
1: मैं इनसे मिल चुका हूँ सर।
2: आपने इनके प्लान पर साइन करने से इनकार क्यों कर दिया?
1: इसे प्रोसीजर के मुताबिक पेश नहीं किया गया सर। इस प्लान के साथ इसकी फाइल होनी चाहिए।
2: फाइल?
1: जी हाँ सर, फाइल, जिसमें इस जमीन का ट्रांसफर डीड है, ट्रस्ट का रेजोल्यूशन है, टेंडर का नोटिस हो, टेंडर आपको इसी आदमी के नाम से खुला है, इसकी जानकारी हो।
2: देखा सर सरदूल सिंह, इसे कहते हैं कॉन्शेशियस और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तुम्हें फाइल साथ लेकर जानी चाहिए थी। ये लो फाइल, मंत्री जी का फैसला है कि यहाँ विकास कार्य जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, इसलिए हाथों हाथ फाइल को चलाया गया है। इनका ठेका देने का फैसला भी ऊपर से हुआ है। आप इस प्लान पर साइन कर दो।
1: पर ये वो ब्लूप्रिंट नहीं है सर। इस जमीन पर तो पार्क कॉम्प्लेक्स बनना था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहां से आ गया?
3: ये यहाँ पार्क के लिए साइट रखी हुई है, 200 स्क्वायर यार्ड का पार्क है।
1: एक पार्क नहीं सरदूल सिंह जी, पार्क कॉम्प्लेक्स बनना था, जिसमें झूले थे, फिसल पट्टियां थी, खेल का मैदान था, फुलवाड़ियां थी, फाउंटेन्स थे, पेड़ थे।
2: तुम्हारा दिमाग घास चरने तो नहीं गया? शहर में खेल के मैदानों का क्या काम?
1: सर, सवाल शहर में खेल के मैदानों की इंपॉर्टेंस का नहीं, सवाल है बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास का, राष्ट्र के भविष्य का, एक स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का। ये जमीन सरदार खड़क सिंह ने दी थी।
2: जमीन किसी ने भी दी हो, इस वक्त ये जमीन हमारे पास है, हम जो चाहे इस पर बना सकते हैं, जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये फाइल, इसमें हर एक कागज लगा है, हर वो डॉक्यूमेंट लगा है जो इसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है।
1: नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये वो फाइल नहीं है। वो फाइल बिल्कुल कंप्लीट थी, उसमें पार्क कॉम्प्लेक्स का प्लान भी लगा हुआ था, जिस पर मेरे और चीफ इंजीनियर के साइन थे। वो फाइल कहाँ है सर? चेयरमैन साहब, एक्सक्यूज मी, ये फ्रॉड है। आई फील देयर इज सम शैडी डील इन इट। ये करोड़ों का घोटाला है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा।
2: अरे रुको भारतेंदु, ये है ओरिजिनल फाइल, इसे भी साथ ले जाओ, फ्रॉड को साबित करने के लिए कुछ सबूत तो चाहिए।
1: ये सर, ये आप क्या कर रहे हैं?

0: ये फाइल जला रहे हैं सर आप। नहीं नहीं मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। छोड़िए, हटके पीछे, हटके पीछे, मैं कहता हूँ पीछे हटिए, छोड़िए, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए फाइल।
1: क्या कर रहे हैं
2: क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये हाथ कैसे जल गया?
0: सच्चाई को जलाने से बचाने की कोशिश की थी।
2: कौन सी सच्चाई? किस सच्चाई को बचाने के लिए आपको अपना हाथ जलाना पड़ गया?
0: उन्होंने उस फाइल को आग लगा दी है जिसमें पार्क कॉम्प्लेक्स के डॉक्यूमेंट्स थे।
2: अरे तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, पार्क कॉम्प्लेक्स बने या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स?
0: क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का भविष्य सीमेंट में चिना जा रहा है और तुम कहती हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता।
2: एक पार्क कॉम्प्लेक्स के ना बनने से देश के भविष्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों नहीं समझते?
0: कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें तुम्हें भ्रष्टाचार का खूंखार चेहरा दिखाई नहीं देता, बच्चों के अधिकारों का दमन दिखाई नहीं देता, पर्यावरण को दूषित करने की आवाजें सुनाई नहीं देती। भविष्य बिगड़ेगा नहीं तो क्या संवरेगा?
2: अरे देश के भविष्य की चिंता है, अपने वर्तमान की नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे हमारा वर्तमान मिट्टी में चिन देंगे ये लोग, क्यों भूलते हैं आप कि आज का सिस्टम क्या है
0: और हम क्या है? उस सिस्टम के लज्जाहीन भोक्ता, जिस आजादी को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया, हमारा काम सिर्फ उसे भोगना है, लूटना है। उसकी रक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
3: जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी में अपना बैरत तो नहीं खोदना चाहिए तुम्हें। जोश में होश ना हो तो जोश हत्या का कारण बन जाता है, समझे तुम? भावनाओं के जोश में तुम इस कदर अपना बैरत खो बैठे हो कि आप इसका रिकॉर्ड चला दिया।
0: बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने रिकॉर्ड चला दिया?
3: अंबुजी चेयरमैन ने फोन पर सब कुछ बता दिया है। जानते हो कि सरदूर का शुमार किन लोगों में है? उसके पास मनी पावर है, मसल पावर है, ऐसे शख्स के साथ उलझने की क्या जरूरत है तुम्हें?
0: बाबूजी मैं किसी के साथ नहीं उलझा, मैंने फाइल जलाई नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश की है।
4: तुम्हारे कहने से क्या होता है, वहां सारा दफ्तर तुम्हारे खिलाफ हुआ है, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं।
5: और सोमनाथ भाई ने गैर कानूनी जमीन बचाकर सच्चाई पर पानी फिर जाने दिया।
0: केवल जमीन ही नहीं बचाई बल्कि सारे केस को रफा दफा कराकर मेरी ट्रांसफर भी करा दी। अब सुना है वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं।
5: सबूत के बगैर तुम्हारी खबर खबर नहीं बनेगी, शोशा बनकर रह जाएगी।
0: सबूत है तो सही, शायद काफी ना हो।
5: क्या सबूत है?
0: उस फाइल के कुछ अजले कागजात मेरे पास हैं। खड़क सिंह अंकल ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी बेटी सिमरन को दिया था, वो अमेरिका में सेटल है। अंकल ने अपनी जायदाद के बंटवारे के लिए वसीयत भी की थी, वो सिमरन के पास जरूर होगी। जिस फंक्शन में अंकल ने जमीन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को ट्रांसफर की थी उसमें सिमरन भी शामिल थी, उसने उस पर वीडियो भी बनाई थी, शायद वो वीडियो अब भी उसके पास हो।
5: तुम्हें रिस्क का अंदाजा है?
0: तभी तो ये खबर आपको दी है।
5: यानी तुम रिस्क उठाने से डरते हो, मुझे इस उम्र में एक बार फिर लड़ने को कह रहे हो, और तुम में एक बार भी लड़ने की जरूरत नहीं।
0: आप न सही, लेकिन आशी तो प्रेस के माध्यम से ये लड़ाई लड़ सकती है।
5: इससे क्या होगा, कुछ दिन लोगों में चटखारेदार चर्चा होगी, फिर सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ खामोश हो जाएगा। धरना दोगे? हाँ धरना। तुम अपने और शुभेंदु के मित्रों से बात करो, मैं यहाँ के फ्रीडम फाइटर से मिलती हूँ। अगर ऐसा हो सके तो स्वतंत्रता दिवस पर फिर एक बार राष्ट्रीय चेतना को जगाया जा सकता है।
3: सुन लिया सोमनाथ, अपनी अंतरात्मा की जिस आवाज को तुम आज तक अनसुना करते आ रहे थे, उसे अपने बेटे भारतेंदु के मुंह से सुन लिया। बोलो कैसे करोगे अब शकीला का सामना, उसके चुभते धिक्कारते सवालों का क्या जवाब दोगे, अपने दोस्त खड़क सिंह की आत्मा को क्या जवाब दोगे?
6: बोलो, है कोई जवाब?
3: कौन हो तुम?
6: मुझे नहीं पहचान रहे हो? गौर से देखो।

0: मैं तुम्हारा दोस्त खड़क सिंह हूँ।
1: खड़क सिंह,
0: याद कराने आया हूँ उन आदर्शों को जिन पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन आदर्शों को जीने का संकल्प किया था।
1: मुझे संकल्प याद है।
0: याद होता तो आज तुम इस तरह अपने आप से आंख ना चुराते होते, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हो गए होते। मेरे यार, तुम धरती के एक टुकड़े को भ्रष्टाचार से नहीं बचा सके, जिस धरती के साथ मेरे नव निर्माण के सपने जुड़े थे उसे तुम्हारे सामने भ्रष्ट लोगों ने मिल बांट लिया है और तुम देखते रह गए, यहां तक कि अपने बेटे की जबान तक को दबा दिया। अरे, खुद कुछ नहीं कर सकते थे तो उसे ही अपने आदर्शों का संबल दे देते, उन्हें तो तुम पूजा की सामग्री बनाकर कैश करा रहे हो।
1: नहीं नहीं, मैंने उन मूल्यों को कैश नहीं किया।
0: करते रहो, नहीं नहीं नहीं नहीं, देते रहो अपने आप को झूठी तसल्लियां। कुछ दिनों में भ्रष्टाचार की खूबसूरत इमारत उभरेगी, उसके भव्य उद्घाटन में जाकर उन आदर्शों और मूल्यों का गुणगान तुम्हें भी करने का मौका मिलेगा। उस मौके को हाथ से मत जाने देना, तुम्हारी शान भी दोबाला हो उठेगी।
1: नहीं, ये इमारत नहीं उभरेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा।
2: तुम इसे कैसे रोक सकते हो?
1: देखो सरदूल, मैं तुमसे बात करने नहीं आया, मैं चेयरमैन साहब से बात करने आया हूँ, समझे?
3: ठीक है, आप मेरे साथ बात करें। कल तक तो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कोई एतराज नहीं था, आज इस अचानक तब्दीली की वजह?
1: मेरा जमीर, मेरी आत्मा।
2: ओहो, अचानक तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया? कल तक तो ठीक ठाक थी, कहीं एक आध प्लाट के लिए तो राल नहीं टपने लगी?
1: सरदूल सिंह,
3: तुम खामोश रहो। सरदूल, सोमनाथ जी, क्या कहती है आपकी आत्मा?
1: यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बस।
3: आपको मेरे काम में दखल देने का अधिकार किसने दिया है?
1: उन आदर्शों और मूल्यों ने जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी।
2: लो, आ गए आजादी के ठेकेदार। एक बार बाबा जी को जोश चढ़ा है। बाबा जी, आजकल कोई आजादी की लड़ाई नहीं चल रही।
1: चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक इस धरती को राष्ट्र विरोधी ताकतों से आजाद नहीं करा लिया जाता, समझे सरदूल सिंह? आजादी की लड़ाई किताबों में छपने वाली कोई कहानी नहीं, बल्कि ये इतिहास की ठोस हकीकत है, हमारे देश प्रेम की अमर पहचान है, हमारे अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा है, समझे तुम? हम इसे कभी कलंकित नहीं होने देंगे, कभी नहीं। चेयरमैन साहब, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपने खड़क सिंह की धरती पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैं इसका विरोध करूंगा।
3: देखो सोमनाथ, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं, वो जमीन खड़क सिंह की थी लेकिन आज ये ट्रस्ट की है।
1: वो तुम्हारी निजी मलकीत भी नहीं है, वो राष्ट्र की धरोहर है, समझे आप? उसे खड़क सिंह ने ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र को सौंपा था और तुम इन जैसे लोगों के साथ मिलकर उसे बेच रहे हो, ये है आपका ट्रस्ट।
2: देखो बाबा, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। चेयरमैन साहब, आप क्यों इन लोगों को सिर पर चढ़ाते हो? आजादी की लड़ाई क्या लड़ी है, अपने को देश का मालिक समझने लगे हैं। जाओ बाबा, जो करना है करो, ढिंढोरा पीट कर देश प्रेम की दुहाई दो, देखता हूँ तुम अकेले क्या कर सकते हो।
4: ये अकेले नहीं है, मैं भी इनके साथ हूँ।
3: आप कौन है?
4: मैं शकीला हूँ।
2: तुम भी कोई फ्रीडम फाइटर हो?
4: ठीक पहचाना आपने, सिर्फ मैं ही नहीं, सामने देखो, भारतेंदु, शुभेंदु, वो सैकड़ों नौजवान हमारे साथ हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम धरना देंगे।
5: भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
6: भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।

0: जी दोस्तों तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम शुरू हो चुके ते प्यारे प्यारे गीत वसे सुनाने शुरू कर चुके हैं ते हुन व्हाट्सएप तो बाद वारी है जी फोन दे राही साडे तक जो फरमाइश पूरी आई है उन्नू पूरे करन दी। सो देखदे हैं जी फोन ते सानू फरमाइश करन वाले पहले कॉलर कौन ने। हैलो
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन गलबात

0: कर रहे हो
1: महेश गर्ग मंडी हरजीरा मलोड़ तो बोल रहे मैं। धन्यवाद
0: जी। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम जिते। अपना हाल चाल दसो, की हाल चाल है
1: जी।
0: जी। प्रोग्राम रोज सुनते हो तुसी?
1: हाँ जी मैडम जी,
0: ते ठीक है, फिर आज दसो गाना केड़ा सुनोगे फरमाइश करके?
1: दो कड़ियां फिल्म दाई तुम्हारी नजर क्यों खता खता बख्शो दिलर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ली। अपना मनपसंद गीत सुनो अपने रेडियो सेट ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी।

नदी पसंद था एक गीत। मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कश्मीर की कली चुनिया गया एक गीत।

जी व्हाट्सएप दे जरिए सानू फरमाइश भेजिए जी। बुलटाना इस्लामपुर महाराष्ट्र तो फरमाइश भेजिए सहदेव दमोदर, शशिकला दमोदर, सुमित कुमार दमोदर होर ने पारसमनी फिल्म का एक गीत सुनना चाहते हैं। अगली फरमाइश भेजिए जी सानू जिला मुरादाबाद पिंड दाहलपुर उत्तर प्रदेश तो भेजन वाले ने फरमाइश मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी रितिक ते बलबीर सिंह होर ने। अगली फरमाइश सानू भेजिए करनी खेड़ा फाजिलका पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश कुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन राणू, परवीन, नवीन, अनमोल, बूटा, मनीता, नवनदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरपक्ष ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। अगली फरमाइश सानू भेजिए जी पिंड जगोड़ी जिला जमुना।

0: थैंक यू सर।
1: जी गीत केड़ा सुनाइए थोनू अच
0: रोटी कपड़ा मकान दा सुना दे जी।
1: जी रोटी कपड़ा और मकान फिल्म दा गीत सुनना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया फोन
0: मयूरी।
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ली। अपना मनपसंद गीत अपने रेडियो सेट से सुनो।
0: थैंक यू सर।

जी थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम के विच हुण असीं अगली फरमाइश पढ़ रहे हैं वट्सएप के जरिए जो साढ़े कोल पहुंची है। ये फरमाइश सानू आई है जी MLB रोड ग्वालियर तो भेजन वाले ने सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव या आरव खुराना SK पप्पी वालों इन्होंने फरमाइश किया जी बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। तो अगली फरमाइश सानू आई है जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो भेजन वाले ने फरमाइश राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा निवान शर्मा मैंडी शर्मा सौरव शर्मा ते शाइना शर्मा। अगली फरमाइश जड़ी आई है जी पटेल नगर मलोट तो आई है तो भेजन वाले ने फरमाइश डॉक्टर रमेश कुमार जंजोरिया गीता रानी जंजोरिया गगनदीप जंजोरिया आरजू जंजोरिया ते गुड्डू। अगली फरमाइश सानू आई है जी श्री सुधांकर राय जाधव डॉक्टर प्रशांत राय जाधव वालों भेजन वाले ने भेजी है जी फरमाइश ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद तो। अगली फरमाइश सानू आई है जी आरे गांव तो कुमार संचित वयाल होर वालों मोहताला तो कुमार प्रथमेश देशमुख होर वालों मोहताला तो फरमाइश आई है कुमारी प्रणाली देशमुख वालों कनाडा तो फरमाइश आई है जी कुमारी संदर्भ देशमुख वालों तो करड़ा वालों करड़ा तो फरमाइश आई है कुमारी सानवी देशमुख होर वालों। अगली जी फरमाइश आई है जी सानू ये आई है जी तनौरी तेली वाला तो भेजन वाले ने फरमाइश निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू होर वालों। अगली जड़ी फरमाइश आई है जी जी पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो भेजन वाले ने फरमाइश हरजिंदर शिंदर जसवीर जसी सीता और गीता ये पता नहीं जी फिल्म का नाम लिखा कि उन्होंने अपने नाम लिखे ने सो इन्हों की फरमाइश पूरी कर दी है। तो आओ थानू सुना बुढ़ा मिल गया फिल्म चलिया गया ये गीत

जी व्हाट्सएप के जरिए साढ़े को फरमाइश पहुँच चुकी है जी। ये फरमाइश सानू आई है जी कोट मोहल्ला चुगंटी बुलंदशहर तो भेजन वाली फरमाइश मुहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफाज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अब्बासी अरजान अब्बासी अब्बासी ते पूरा अब्बासी परिवार फरमाइश कर रही है जी सानू लव इन टोक्यो फिल्म च लाए हुए गीत नू सुनना चाहते ने। तो अगली जोड़ी फरमाइश सानू आई है जी ये आई है जी खड़गे नगर यमतवाल महाराष्ट्र तो भेजन वाले ने फरमाई लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पना ताई लोखंडे शैलेश लोखंडे प्रतीक्षा लोखंडे स्वरपली प्रीत लोखंडे रक्षिता लोखंडे रियांश लोखंडे तो पूरा लोखंडे परिवार। अगली फरमाइश जी आई है जी सानू बारह राजस्थान तो आइए वार्ड नंबर बारह राजस्थान तो आइए भेजन वाले ने फरमाइश परमजीत कौर सोलंकी विष्णु देव सोलंकी राजवीर सोलंकी रमन राठौड़ तो इन्हों का पूरा परिवार फरमाइश कर रहा जी। अगली फरमाइश जी आई है जी सानू ये आई है जी इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा पुष्पिंदर कौर हुर वालों आई है जी बठिंडा तो फरमाइश सो इन्हों की फरमाइश पूरी कर जा रही है तो सुनती हाँ लव इन टोक्यो फिल्म चु लिया गया है गीत

0: उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram,

0: बिल्कुल जी, मेरी मम्मी ने पसंद नहीं है। तुम गीता जी करें सुनीता शर्मा होने की आवाज़ से भी इतने प्रोग्राम चल रहे जी। सो गा तो मैं थोड़े दोस्त अरुण इस वे थोड़े नाल पढ़िया होया तो दोस्तों दी कॉल्स भी जिहड़ियां ने सानू आनियां शुरू हो गई। सो सब तो पहले कॉलर तो देखते हैं कौन आए ने जी। हैलो,
1: हैलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच।
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी पिंड।
0: हाँ जी राजू जी, की हाल चाल है जी थोड़े? चलो वधिया होने चाहिए है। तो की कर रहे थे इस वेले?
1: ਬਸ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਚ।
0: ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ?
1: ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੱਗੀ।
0: ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗ ਗਈ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਅੱਜ?
1: ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

0: बिल्कुल एक फूल तोड़ लें अड़ते की तो जगह करते आसमान साफ दी वहां से बीच प्रोग्राम शरह जी सुकात ते मैं थोड़ा दोस्त अरुण ऐसे थोड़े नाल पढ़िया होया कॉलर दोस्त भी आ गए ने जी। हेलो
1: हेलो सर जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुकात विच।
1: थैंक यू मालिक सर
0: जी। कौन गल कर रहे हो, तुम कितों गल कर रहे हो जी?
1: सर जी मैं जलकरा जी गुरदासपुर तो।
0: हाँ जी जलकरा जी, की हाल चाल है जी थोड़े?
1: हाँ जी हाँ जी, कृपा जी परमात्मा भरावान का आशीर्वाद।
0: चलो वधिया जी, भरावान का आशीर्वाद तो नहीं, परमात्मा की कृपा आप मान सकते हैं, तो बाकी भरावान का तो साथ ही है।
1: ठीक है जी।
0: सो होर सुनाओ, की कर रहे थे इस वेले?
1: बस जी फोन ट्राई कर रहे जी।
0: अच्छा,
1: सब तो पहले लगा ही पर वो तो डल चुकी है। नहीं
0: पता नहीं जी, मेरे को हुणे जिवें रिंग आई है मैं नाल ही चक लिया। सो केड़ा गीत सुनाइए तुहानू हुण?
1: राज मंदर जी साहब दा जी।
0: केड़ा गीत
1: सुनाना? पानी खिच के लियांदा कौन तेरा खांदा जी।
0: क्या बात है, बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश में पूरी करने जा रहे हैं, कॉल करने के लिए शुक्रिया जी।
1: थैंक यू बहुत,
0: थैंक यू जी, थैंक यू। सो बिल्कुल दोस्तों, अभी कुछ वट्सएप मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम के। सो मैसेज साढ़े तक पहुँचा है जी, पिंड शाहजली जिला संगरूर तो भेजा है।

सुबह दोस्तों तुम इंजॉय कर रहे जी प्रोग्राम सुगात अपने दोस्तों के नाल पर जो समा है और आता एक वचन वाले पास बार बार मैं इशारा कर रहे सो इस प्रोग्राम में मैंने इतने खत्म कर दी इजाजत क्योंकि हम तो कुछ पलों के बाद रात एक जरा वचन वाला सो तुम कितने नहीं जाना क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होगा तब तक पड़े रहो आकाशवाणी पंजाब के नाम।

0: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेवादार गुरबाणी विचार जेड़ा आकाशवाणी जलंधर तो बहुत लंबा अरसा चलता रहा, जदों वसीले नहीं सी हुंदे, लोग तकालां नूं अपना रेडियो ऑन कर लेंदे सी, ते अद्धे घंटे दा इह गुरबाणी विचार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जाता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो संस्था जिस संस्था ने प्रबंध गुरबाणी के प्रचार से प्रसार और कित को कुदरती आफता आ जाए उत्थे बढ़ चढ़ के अपना योगदान पाती है। तो ये वसीले गुरु की गोलक ते कुछ जायदात 105 साल पुरानी संस्था।

भक्त पाई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। इस शब्द गायन की तसी पाई बख्शीश सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचली बाणी विच एक अकाल पुरख की आराधना का उपदेश है। बाणी विच अनेकां वडमुल्ले संदेश रब्बी सुनेहे मनुखता लई सुभाए मान ने। गुरु महिमा गुरमुखां दी महिमा वालियां रचनावां विच सुचज्जी जीवन जुगत दर्शाई गई है। श्री गुरु रामदास जी वडहंस की वार महला चौथा जिस दियां 21 पौड़ियां हन, पंजवीं पौड़ी विच गुरु महिमा बयान करदे होए फरमाउंदे ने, मैं उस गुरु तों वारने जाना हां जिस गुरु ने मैनू हरि प्रभु की बात कथा सुनाई है। मैं ऐसे गुरु तो सदा सदा बलिहारी हाँ जिस गुरु ने मेरे लिए हरी सेवा करन दा सबब बनाया है। हुण ऐसा सच्चा गुरु मेरे नाल है, मेरे अंग संग है, जो हर थां हर वेले मेरा राखा है। शाबाश है ऐसे गुरु नू जिसने मैनू हरि परमात्मा दी महिमा दी सोझी बख्शी है। दास ऐसे गुरु तो कुर्बान है जिसने हरि का नाम मैनू प्रदान करके मेरे मन दी आस पूरी कीती है, मेरिया इच्छावां दी पूर्ति कीती है। ऐसा प्यारा सतगुरु मेरे नाल है। सरवण करदिया वडहंस की वार विचों इस रचना दा गायन। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथै किथै मैनू लै छड़ाई। इस पावन रचना का गायन किया है भाई लखविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

जिन हर की हर कथा सुनाई, भाव मैं सदके हाँ अपने गुरु तो जिसने प्रभु की गल मैनू सुनाई है। श्री गुरु रामदास जी ने श्री राग अंदर एक होर शब्द राही बयान किया है कि हे भाई जनों, कोई परउपकारी है जो मैनू परमात्मा नाल मिला देवे। तां गुरु जी नाल ही उत्तर देंदे हन कि ऐसा परउपकारी केवल सतगुरु ही है जो नाम बख्श के परमात्मा नाल जोड़ सकता है। फरमान है, मेरे भाई जना, कोई मोकव हर प्रभ मेल मिलाए, हों सतगुर विट हुआरिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। श्री गुरु अर्जन देव जी एक होर शब्द राही ये बख्शिश करते हैं कि हे भाई, सच्चे सतगुरु की सेवा ही सफल है, क्योंकि गुरु की कीती सेवा नाल सतगुरु त्रुट के परमात्मा नाल मिला देंदा है। सतगुरु जी का फरमान है, भाई रे, साची सतगुर सेव, सतगुर तुठै पाई है पूर्ण अलख अपेव। विचार अधीन शब्द दियां अगलियां पंक्तियां इस प्रकार हन। तिस गुरु कौ सद बलिहारणै जिन हर सेवा बणत बनाई। गुरु साहिब फरमान करदे हन कि मैं अपने सतगुरु तो सदके जांदा हाँ जिसने प्रभु की भगती की रीत चलाई है। श्री गुरु नानक देव जी श्री राग विच अपने शब्द की राही गुरु की महानता दर्शाते हुए फरमान करते हैं कि गुरु परमात्मा के दर उत्ते पूजन लई पौड़ी है, संसार समुद्र नूं पार करन वास्ते बेड़ी है, ते प्रभु का नाम देण वास्ते तुलहा है। फरमान है, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुलहा हर नाओ, गुर सर सागर बोहे थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जे तिस भावै उजली सत सर नावण जाओ। इसे भगती रीत नूं भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि गुरु नानक देव जी ने हर घर विच इह भगती लहर स्थापित कर दित्ती। फरमान है, घर घर अंदर धर्मसाल हुवै कीर्तन सदा विसोवा। ते नाल ही करतारपुर की मर्यादा बन के अमृत वेला ते शाम वेले की संभाल की मर्यादा स्थापित कीती। भाई गुरदास जी का वचन है, सो दर आरती गावी है अमृत वेले जाप उचारा। गुरु साहब वालों ही यह भगती का मुढ़ बजदा है। गुरु साहब अगली पंक्ति विच बख्शिश करते हैं, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। भाव वह सतगुरु सदा मेरे नाल रहिंदा है ते मैनू विकारां तों बचा लैंदा है, हर थां मेरी सहायता करदा है। तनासरी राग अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी बख्शिश करते हैं कि उसका मुढ़ कदीमा का सुभा है कि वह अपने सेवकों नूं कोई भी दुख देने वाली घड़ी नहीं देखण दिंदा। गुरवाक है, औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे रख है अपने को सास सास प्रतपाले। बिलावल राग अंदर गुरु अर्जन देव जी एक होर फरमान राही बख्शिश करते हैं कि सतगुरु का मुढ़ कदीमा का सुभा है कि वह अपने सेवक की सहायता करता रहिंदा है। फरमान है, कारज सतगुर आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सूख मंगल कल्याण विचारिया। सतगुरु जी अगलियां पंक्तियां राही बख्शिश करते हैं, तिस गुरु कौ सा वास है जिन हर सोझी पाई। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी इस पंक्ति अंदर फरमान करते हैं कि शाबाश उस सतगुरु नूं जिसने मैनू परमात्मा की सूझ बख्शी, मैं सदके हाँ उस गुरु तो जिसने परमात्मा की वडियाई मेरे हिरदे विच फसाई। बिलावल राग अंदर गुरु अर्जन देव जी भी बख्शिश करते हैं कि पूरे गुरु ने मेरी इज्जत रख ली है, मैनू आत्मिक जीवन देने वाले परमात्मा का नाम बख्शिया है। फरमान है, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मह दीनों, जन्म जन्म की मैल गई। विचार गोचरे शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां अंदर फरमान है, नानक गुर विट हों वारिया जिन हर नाम दिया मेरे मन की आस पराई। भाव जिस गुरु ने मैनू परमात्मा नाल मिला दिता है ते मेरे मन की आस पूरी कीती है, मैं

देखत दर्श भटक ब्रह्म भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा तुलबत, आलस मूल कुसुम सुबास, बेतेमान गुराप थप्यो थिर, साचो तखत गुरु रामदास। तारयो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद्र सिद्ध न छोड़े साथ, दान बड़ा अतवंत महाबल, सेवक दास कहो तथ, ताहे कहाँ परवाह कहूँ की, जाके बसीस तरयो गुर हाथ।

करण कारण सम्राट सदा सोई सरजी मनते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते

0: नारद ध्रुह प्रहलाद सुदामा पब भगत हर के जू गण अमरीक जय देवत लोचन नामा अवर कबीर पढ़ तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगतर पर साहो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो
1: जेह सत गुर सिमरंत नायन के सिमर मिटाखिन जेह सत गुर सिमरंत।

कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागै तिन काम क्रोध जमको नहीं त्रास जिवे अंगद अंग संग नानक।